0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

सो द पॉइंट इज कि जब पुरानी बातें आती है ना तो इतनी अच्छी तरीके से आती हैं कि वो लेयर बाय लेयर सारी सच्चाई बता के चली जाती है. एनीवेज मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और मुझे पता है कि जब हमें बॉलीवुड का कंटेंट पसंद होता है ना तो बॉलीवुड अफेयर्स पसंद होते हैं जानना, और बॉलीवुड में पहले के टाइम पर क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो सब कुछ जानना हमें पसंद होता है. सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम आपके साथ. सो एनीवेज हमें बहुत कुछ पता होने में एक चीज और पता है कि संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित एक दूसरे को एक टाइम पर डेट कर रहे थे, और वो अगर टाइम फेज अगर मैं ब्रैकेट में रखूं तो साजन मूवी के दौरान जो है ना वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे, समथिंग लाइक दैट. तो इस मूवी के डायरेक्टर ने पुराने किस्सों में एक किस्सा बताया है, और वो ये है कि जैसे ही माधुरी दीक्षित के क्लोजअप शॉट्स वगैरह शूट किए जाते थे, माधुरी दीक्षित के अराउंड सिंगल जो शॉट्स है ना वो लिया जाता था, तो उस दौरान संजय दत्त उस तरफ स्क्रीन पे बैठकर कैमरा पे ना वो जो फुटेजेस हैं वो बहुत ध्यान से देखा करते थे. तो ऐसा कहा गया था कि भाई ये चीज़ें तभी निकल कर आ गई थी, हालांकि सेट्स पर सबके सामने कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये चीज़ें वहां से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर ऐसे ही पुराने किस्से जो आपको एंटरटेन करते हैं और आगे की बातें बताते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चलते रहेंगे मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
3: जब आपकी पहली नौकरी लगी होगी तो उससे पहले आपने जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस के जवाब दिए होंगे वो आपको आज भी सालों बाद याद होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल थे। मतलब डेफिनेटली लाइफ का फर्स्ट मोमेंट था जब हमने नर्वसनेस और एक्साइटमेंट बहुत सारी चीज़ें फेस करी, और उसके बाद मन में एक सवाल ये भी आ रहा था कि कोई हमें क्यों हायर करेगा, हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। हाँ, सो रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर आपके साथ। बाय द टाइम आपको अपनी क्वालिटीज, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू तो पता हो गई होगी, पर हाँ ये जो वैल्यू है वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँची है ये पता है? हाँ, खैर जितनी भी वैल्यू बढ़ गई हो आपको एक इंटरव्यू हो सकता है आने वाली टाइम में सिंगापुर में भी क्रैक करना पड़े। दैट इज कौन सा? मकान मालिक का इंटरव्यू, सोसाइटी अपार्टमेंट का इंटरव्यू। हाँ जी, रिसेंटली वरुण धवन ने एक इंसिडेंट शेयर किया कि उन्होंने एंड नताशा दलाल ने रिसेंटली एक फ्लैट परचेज किया है, और उस फ्लैट को खरीदने से पहले वहां के जो सोसाइटी के द वेरी, मतलब वो कह सकते हैं ना आप, ये कोई हाई फाई सोसाइटी में ही ले रहे होंगे फ्लैट, और वहां के हाई फाई कमेटी मेंबर्स होंगे, उन्होंने पहले इनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद जाकर इनके सारे रास्ते क्लियर किए हैं कि ये वहां फ्लैट खरीद सकते हैं या नहीं। सो डेफिनेटली एक अलग काइंड ऑफ जो ऑडिशन है वो वरुण धवन ने दिया है, और आई थिंक क्लियर भी कर ही लिया है। रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
3: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: एक घर, दो मजहब।
4: आप यहाँ नहीं रह सकते।
5: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
1: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
6: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
1: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: आपने भी कभी ना कभी तो ये ख्वाब देखा होगा कि कब आप अपनी बातों से, अपने शब्दों से किसी को इम्प्रेस करेंगे। सो डेफिनेटली जब आपने ये सोच ही लिया है या आपके मन में ये थॉट कभी आया भी है तो इसको आप पूरा कर सकते हो। कैसे? हमारे मस्ती मीडिया नेटवर्क की द आरजे अकेडमी को ज्वाइन करके। ऑफकोर्स मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए बहुत कुछ इंट्रोड्यूस करता रहता है। ऐसे में अगर आपने आरजे बनने का ख्वाब देखा है, रेडियो एक्सपीरियंस आपको लेना है, रियल स्टूडियो ट्रेनिंग से लेकर आपको अपना टैलेंट दिखाना है हमारे लाइव शोज तक, तो आपको हर चीज एक थ्योरी बेसिस पे भी सिखाई जाएगी और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी दिखाई जाएगी। और आपकी यूएसपीज को पहचान कर एक कस्टमाइज्ड, आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल कोर्स डिजाइन किया जाएगा जो कि आप हाइब्रिड मोड पे ऑप्ट कर सकते हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें आप ये स्किल ग्रैब कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आप हमें ईमेल कीजिए info@radiomasi.com.sg। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
3: I love you, रसना।
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन टका टका। जोश में
0: रहो। देखो ये अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे जो है ना वो इंडिया का इस तरह से खास इंडिपेंडेंस डे है कि हर बार की तरह जो सेलिब्रेशन है कैपिटल सिटीज से लेकर स्मॉल सिटीज तक जो है वो 5 times, 10 times बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका सेलिब्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है। कैसे भाई? सिनेमा घरों में इंडिया के डिवाइडेशन का जो फील है वो सिंगापुर तक पहुंच गया है। रेडियो मसीह 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। दिस 14th of August रिलीज हो रही है सनी देओल स्टार प्रीति जिंटा स्टार आप कह सकते हैं, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल, अभिमन्यु सिंह, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, प्रोड्यूसर आमिर खान, इन सबके कॉम्बिनेशन के साथ बटवारा 1947। हाँ जी, ये अपने आप में आपको इंडियन पार्टीशन जो 1947 पे हुआ था ना उस फील तक आपको ले जाएगी। अगर आपको इंडिया से दूर रहते हुए इंडिया की फील लेनी है एंड डेफिनेटली इतिहास के बारे में और डिटेल से जाननी है तो ये मूवी अक्रॉस द आइलैंड रिलीज हो रही है 14th of August, विच इज ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। मैं आरजे नुपुर इस मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको और भी एंटरटेन करेगी आफ्टर शॉर्ट व्हाइल।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

अच्छा, ये जो आपकी हैंड राइटिंग है ना, ये बहुत कुछ बयां करती है कि आपने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ झेला है, या फिर आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ बहुत बेटर मोमेंट्स के साथ किया है। बिकॉज जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो आपकी हैंड राइटिंग, आपका सिग्नेचर देख कर आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर भी आपको बहुत कुछ बताते हुए बताना चाहेगी। आज है वर्ल्ड कैलीग्राफी डे। हाँ जी, कैलीग्राफी कह लीजिए, कैलीग्राफी कह लीजिए, लेकिन आप अपने हाथों से लहराते हुए जो शब्द है वो बनाते हैं खूबसूरत तरीके से। तो ये ना जो शब्द है, ये जो मोड है राइटिंग का, ये एक ऐसा मैसेज देता है कि एक शब्द से, दूसरे शब्द से, तीसरे शब्द से जैसे जुड़े जुड़े निकल कर आते हैं ना, वैसे ही लाइफ में हमें ना इंसानों के अराउंड रहना चाहिए, उतना ही जुड़ाव रखकर एक खूबसूरत टेक्सचर बनाकर बाहर निकल कर आना चाहिए। बाय द वे, ये भी बहुत प्यारा एक स्किल है कैलीग्राफी, जिसे आप सीख कर अपनी लाइफ में अपनी करियर को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: देखो बाय द टाइम आपको थोड़ा सा खर्चा पानी रोकना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में जब डिजास्टर जैसे माहौल होंगे तब काम आएंगे ना। सो मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, जैसे आप सेविंग्स करते हैं फ्यूचर में बुरे वक्त में काम आने के लिए, जैसे आप सेविंग्स करते हैं रात का खाना सुबह खाने के लिए, आप सेविंग्स करते हैं फ्यूल की MRT पकड़कर, तो बहुत सारी सेविंग्स ना फ्यूचर पर्सपेक्टिव से करी जाती है अलग अलग वे में। वैसे ही बड़े बड़े एक्टर्स जो है ना वो थोड़ी सी सेविंग्स कर रहे हैं इस थॉट पर कि भाई आगे क्या, अगर मेरी मूवी नहीं चली तो आगे क्या। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगी सिंगापुर कि जो अपने सलमान खान है ना वो हर मूवी के 100+ crore ना चार्ज कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से उनका इतिहास रहा है मूवीज चलनी ही बंद हो गई हैं, लोगों ने उनके ऊपर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। तो ऐसे में मौके का फायदा उठाकर सलमान खान ने अपनी फीस को कम कर दिया है, राइट? सो इस मौके का फायदा उठाकर सलमान खान ने अपनी फीस डिडक्ट कर दी है और हाल ही में उन्होंने एक मूवी साइन करी है SVC 63 जो कि ईद 2027 में रिलीज हो सकती है और एक्सपेक्टेड है इस मूवी में भर भर के एक्शन होगा। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है। रफ्ता रफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी है।

0: स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
3: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। Musti Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
4: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।
3: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
5: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
3: एक घर, दो मजहब।
6: आप यहाँ नहीं रह सकते।
7: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
3: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
8: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
3: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: ऐसा लग रहा है इन्होंने ना गीता पर हाथ रखकर कसम खा ली है कि जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। और ये जो कंक्लूजन है ये मैंने बहुत सारी बातों को देखने के बाद निकाला है। सो ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और वो कौन है जिसने ये कसम खा ली है सच बोलने की, बताऊं बताऊं बताऊं? वो है गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा। और ऐसा मैं सिर्फ अकेले नहीं बोल रही हूँ, सुनीता आहूजा ने कुछ महीनों पहले ये अटकलें लगाई थी, या फिर यह यूं बोलूं क्लियरली इंटरनेट पर बोला था कि उनके जो हस्बैंड हैं गोविंदा, वो किसी कोमल नाम की एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्लेम तो कर दिया था, लेकिन चीजें निकल निकल कर नहीं आई थी। लेकिन रिसेंटली गोविंदा जो है वो उनकी अपकमिंग मूवी की एक्ट्रेस जो है ना, मतलब कोमल रानी स्वर्णकर, उनके साथ निकल कर आए और कहीं ना कहीं स्पॉट किए गए। तो लोगों ने इस स्टेटमेंट को अब सच मान लिया है। और ये स्टेटमेंट जब दोबारा से सुनीता आहूजा तक पहुंचा तो उन्होंने पता है क्या बोला है कि मेरे पति का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ओफो, इतना सारा मसाला, इतनी सारी गॉसिप, आय हाय हाय हाय, आजकल के सीरियल्स में भी नहीं रही है जितने एक्टर्स की रियल लाइफ में रही है, डोंट यू थिंक सो? हाँ, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
0: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
1: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
1: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। सो इंडिया के चक्कर लगाने के लिए आपको तो बहुत सारे बहाने ढूंढने पड़ते होंगे, राइट? लेकिन हमारे बीच बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंडिया से बाहर बसे हुए हैं और वो अच्छे खासे बहाने ढूंढकर बार बार इंडिया पहुंच रहे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा जो है वो रिसेंटली कई बार इंडिया विजिट कर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी वाराणसी का जो शूट है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एनीवेज, इस बार तो उन्होंने अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ भी इंडिया में एंट्री ली और वहाँ पे वो लोग इंडियन कुजीन खाते हुए भी नजर आए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है कि धीरे धीरे से प्रियंका चोपड़ा जो है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस बन चुके हैं। हाँ जी, 30 करोड़ उन्होंने रिसेंटली मूवी के लिए चार्ज किए हैं। इतना अभी तक किसी ने नहीं किया। सो डेफिनेटली देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा जो है, जब काम करती हैं तो बेस्ट काम करती हैं। अदरवाइज वो थोड़ा सा मतलब शांत रहना पसंद करती हैं, राइट? चलिए, मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे अनुपर आपके साथ बनी हुई थी। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय, मुलाकात करते हैं बहुत जल्द।

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: तो फाइनल है कभी आई लव यू नहीं बोलना है राइट
4: राइट
3: कूल वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं
4: Nadi
3: Jamesh Nadi Jamesh Ah, it's so sexy.

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
2: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। प्रेजेंटिंग द एनकोर ऑफ योर फेवरेट शोज, अनदर डे अनदर टाइम फॉर योर लिसनिंग प्लेजर ओनली, बिकॉज सुपर हिट्स डिजर्व अ रिपीट। चेक आउट द एनकोर शो स्केड्यूल ऑन आवर ऐप मेन्यू।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: नाचने का मन है?
5: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: राम, सत श्री अकाल, गेम जय सिंगापुर, सारू जय।
1: नो टॉकिंग अलाउड, सिर्फ म्यूजिक बोलेगा। बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे,
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20.
2: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा.
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है. Time to raise the bar. Mashi Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week, full on Renuka style. Renuka. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ. कि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश. योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म. यू सी, ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beat

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेंसडे है, मतलब मंडे की जो थोड़ी सी टेंशन थी ना वो अब निकल चुकी है। फ्राइडे का वेट अभी ऑफिशियली शुरू हुआ नहीं है और हम बीच में खड़े हैं बिल्कुल बैलेंस बना के। हेलो सिंगापुर, हाउ आर यू? आपका वेंसडे कैसा चल रहा है? कॉफी हाथ में आ चुकी है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, कम्यूट शुरू हो चुका है कि नहीं? अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, अभी भी आप अपने बेड पे तो नहीं है ना? चलो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी आपके और अलार्म क्लॉक के बीच में कोई नेगोशिएशन चल रही है? Isn't that too late for that? पर कोई बात नहीं, बस 5 मिनट और ले लो और तैयार हो जाओ। Whatever stage of Wednesday you are at, welcome to Masti Hangout. नया दिन है, नया शो है और मेरे लिए भी हर बार स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने बैठना इट्स ऑलवेज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई आई लव माय माइक्रोफोन। क्योंकि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यही है, कल जो हुआ वो कल था, आज हम फिर से मिल रहे हैं बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ। आज किसी महान इंसान ने कहा शो मस्ट गो ऑन। आज मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आज पहली बात ये बता दूं कि 12th ऑफ अगस्त है, इंटरनेशनल यूथ डे है। दुनिया यंग लोगों के आइडियाज, एनर्जी, क्रिएटिविटी और उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट कर रही है, रिकॉग्नाइज करती है आज के दिन। लेकिन यूथ सिर्फ एज का नंबर थोड़ी ना है, कभी कभी क्यूरियोसिटी यंग लोगों में आती है और कभी कभी नए आइडियाज आ जाते हैं, कभी कभी बिना किसी रीजन के वो बहुत स्टूपिड सी बातें कर लेते हैं। बस एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनके कंधों पर नहीं है, बहुत कुछ है। तो आज अगर लाइफ थोड़ी आपको रूटीन जैसी लग रही है, लेट्स शेक इट अप अ लिटिल। सिंगापुर की मॉर्निंग के साथ थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी स्टोरीज, थोड़ा बॉलीवुड, थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें शातें और हाँ बीच बीच में वो मस्ती हम डालते रहेंगे जो रूटीन को थोड़ा सा रूटीन

मैं हूँ आरजे मुग्धर, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट। चलिए वेंसडे को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, गड़गड़ जनरेटर स्टार्ट की तरह। आपके साथ है आपकी प्यारी मुग्धा तिरकिट धा।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: दे आर फ्रेश, दे आर हॉट,
6: are happening
7: from rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20 now pumping up your Thursday evenings 5 p.m. onwards. The latest and the brightest, the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: अरे यार, ये कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, लेकिन सिंगापुर ने इस कहावत को थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया। हम फिल्मी हो गए। यहाँ पे एक मच्छर दूसरे मच्छर के खिलाफ काम कर रहा है और वो आपका दोस्त है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर इसके पीछे की साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, एडीज मच्छर, उनको कंट्रोल करने के लिए सिंगापुर ने बहुत पहले, डेकेड्स अगो, मतलब ऑलमोस्ट अ डेकेड कह सकते हैं, 2016 में वोलबाचिया जो है ना, वोलबाचिया कैरिंग मेल मस्किटोज जो है वो रिलीज करने शुरू किए थे। घबराइए मत, ये मेल मस्किटोज काटते नहीं है। इनफैक्ट मेल मस्किटोज काटते ही नहीं है, फीमेल काटती है। इनका काम है वाइल्ड फीमेल मॉस्किटोज के साथ मेटिंग करना, मिलना जुलना, दोस्ती यारी बढ़ाना, और जब ऐसा होता है तो इनके जो एग से जो वायबल ऑफस्प्रिंग है ना वो पैदा नहीं होते, यानी धीरे धीरे मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को ये कम करने में मदद मिलती है और डेंगू जो ट्रांसमिशन है उसका रिस्क घटने लगता है। सोचिए, जिस मॉस्किटो को देखकर हम नॉर्मली कहते हैं अरे मारो से, भागो भागो, इतना तो कहने का मौका नहीं मिलता, वही स्पीशीज का एक बहुत ही खास वर्जन डेंगू से बचाने की कोशिश में लगा है पूरे सिंगापुर को। तो शायद हर मॉस्किटो विलन नहीं होता है, कुछ पर्दे के पीछे हीरो की जॉब भी कर रहे होते हैं, और हर विलन जो आपको बुरा दिखता है वो बुरा नहीं होता है।

माय गॉड, प्लीज कोई मेरे कोटेशंस लिख लो, दीवारों पे लगा लो। रहे ना रहे हम, पढ़ते रहना कोटेशंस हमारे दीवारों पे लगे हुए। क्या बोल देती हूँ मैं।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट, तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows, another day, another time, for your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, एनडीपी की परेड चली गई लेकिन वाइब नहीं जा रहा है, उसका फील नहीं जा रहा है। एनडीपी की पिक्चर्स आ रही हैं, स्टोरीज आ रही हैं और एक चीज पर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हम अक्सर एनडीपी में क्या देखते हैं? मार्चिंग कंटिंजेंट्स को देखते हैं, परफॉर्मेंसेस को देखते हैं, टेक्नोलॉजी, फायरवर्क्स, पूरा एक स्पेक्टेकल होता है वहां पे। लेकिन इस बार नेशनल स्टेडियम में मौजूद कुछ टीनेजर्स ने बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही। इतने सारे जनरेशन को एक साथ सेलिब्रेट करते देखना, अकॉर्डिंग टू द टीनेजर्स उनको लगा कि हमारा फ्यूचर थोड़ा लेस कैरी है। सोचिए, 17 साल की उम्र में जब आप अपने सामने बच्चों को लेकर, ग्रैंड पेरेंट्स तक को अपने साथ में लेकर एक ही जगह पर अपनी कंट्री के लिए सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसको चीयर करने जा रहे हैं, और बच्चे जब ये देखते हैं तो शायद आपके मन में थॉट्स आते हो ना आते हो, ओके आई एम नॉट अलोन, बच्चों के मन में आते हैं कि यस आई एम नॉट अलोन, ये देर आर पीपल बिफोर मी, पीपल विथ मी एंड होपफुली पीपल हु विल स्टैंड विथ मी एंड बिहाइंड मी, राइट। एनडीपी 2026 में ना नेशनल स्टेडियम में करीब देखा जाए तो 42,000 to 45,000 लोग मौजूद थे। क्राउड वॉज अमेजिंग और परेड में सिविलियन पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स थी इस बार की। यूथ यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बार इंक्लूड हुए थे और मुझे लगता है यही तो सिंगापुर की रियल स्ट्रेंथ है। एक कंट्री सिर्फ तब सक्सेसफुल नहीं होती है जब उसकी बिल्डिंग्स ऊंची हो, स्काईस्क्रैपर्स दिखे, टेक्नोलॉजी में भाग रही हूं, नहीं। एक देश तब स्ट्रांग होता है जब उसकी अगली जनरेशन उसे देखकर कहे हाँ, मेरा फ्यूचर यहाँ सेफ है, आई बिलोंग हियर एंड आई रिस्पेक्ट माय रूट्स एंड माय एल्डर्स बिकॉज दे विल बिल्ड मी एंड आई विल बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। वाओ, मैंने फिर क्या कह दिया। अगर एक परेड किसी टीनेजर को ये फीलिंग दिला सकती है तो शायद उस परेड की सबसे बड़ी अचीवमेंट फायरवर्क्स नहीं है, आपको पता है क्या है? कोटेशन बनाओ इसका, इट्स होप फॉर द फ्यूचर।
2: ना जाने
1: हाय मुग्धा, धा धा धा, आई एम ग्रेट, आई नो दैट।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
2: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर
4: जीजी
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com
4: Your personal grocer.
5: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
6: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
5: एक घर, दो मजहब।
7: आप यहाँ नहीं रह सकते।
8: मैं कितनी जाना? ये मेरा घर है।
5: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
9: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
5: बंटवारा 1947, starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi and more. Releasing 14th August island wide at the cinemas near you. Brought to you by Vision Discs Singapore.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Sometimes seriously the heart is so heavy। कभी-कभी एक के बाद एक ऐसी खबरें आते जाती हैं कि लगता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इस वक्त कितनी मुश्किलों से, कितनी बेकार सिचुएशन से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। कोलंबिया में अर्थक्वेक आया एंड इट जस्ट चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ। रेस्क्यू टीम्स लगातार काम कर रही हैं, फैमिलीज अपने लव्ड वंस की सेफ्टी को लेकर के बहुत परेशान है, दे आर वेरी एंग्शियस। एक तरफ यूरोप में आप देख लो, फिर से एक्सट्रीम हीट से वो जूझ रहा है, टेम्परेचर्स बहुत ही डेंजरसली हाई जा रहे हैं और लोगों के लिए ये सिर्फ गर्मी नहीं है, इट्स अ चैलेंज नाउ। चाइना में देखो, ये जो टाइफून है डॉल्फिन, हैवी रेन, फ्लडिंग, इतना ज्यादा रिस्क है, कई जगहों पर तो लोगों को सेफर लोकेशंस पर मूव कर दिया गया है। तीन अलग अलग कंट्रीज, तीन अलग अलग सिचुएशंस एंड वन थिंग इज कॉमन, हर जगह बस हर कोई सेफ रहना चाहता है, अपने घर वालों को सेफ देखना चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ वापस चाहता है। एंड दीज मोमेंट्स पता है हमसे क्या कहते हैं, रुक कर थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि हम कितने कनेक्टेड हैं। सिंगापुर में बैठकर हम शायद फिजिकली वहां जाके हर कोई हर किसी की मदद नहीं कर सकता, बट हमारे थॉट्स आर विद एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू ऑल दीज टफ एंड डिफिकल्ट टाइम्स। रेस्क्यू टीम्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज, वी एज सिंगापुरियंस वी स्टैंड विथ यू ऑलवेज एवर एंड ऑलवेज। क्योंकि आखिर में ना बॉर्डर्स अलग हो सकते हैं यार, लेकिन इंसान की परेशानी, उनकी इंसानियत की जो भावनाएं हैं, ह्यूमैनिटी, देयर इज नो बॉर्डर, राइट? सो रेडियो मस्ती की पूरी टीम की तरफ से मैं मुग्धा, जो भी लिसनर्स मुझे जहां से भी सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप जहां कहीं भी हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, वी आर विथ यू। स्टे स्ट्रांग।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ कम बैक्स ऐसे होते हैं ना जिनके लिए कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नाम सुनते ही बस लगता अरे वाह, ये इतने सालों से कहाँ थी। Here she comes, कागज कलम दवात लाओ और दिल इनके नाम लिख दो। बॉलीवुड में कैसी कम बैक स्टोरी आ रही है, उस पर वापसी हो रही है। Guess you guessed it right, शिल्पा शिरोडकर की। जी हाँ, 90s and 2000s की शुरुआत की फिल्मों में भरपूर नजर आई शिल्पा जी, और 26 साल बाद ये वापसी कर रही हैं। और कमबैक भी किसी ऐसी वैसी मूवी से नहीं हो रहा भाई, मालामाल वीकली 2 से हो रहा है। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी एम एफ हुसैन की गजगामिनी, जो कि आई थी 2000। उसके बाद शिल्पा ने एक्टिंग से काफी लंबा ब्रेक ले लिया, पर्सनल लाइफ, फैमिली, इन सब पे फोकस किया। एंड नाउ शी इज मेकिंग अ कमबैक। इतने साल बाद उनकी वापसी बॉलीवुड के सेट्स पर हो रही है। एंड यू नो व्हाट, मजेदार बात, मालामाल वीकली 2 इट्स नॉट अ रैंडम प्रोजेक्ट। ओरिजिनल मालामाल वीकली 2 2006 इट वाज अ कल्ट कॉमेडी, और सीक्वल में परेश रावल की वापसी पहले ही कंफर्म हो चुकी है। रवीना टंडन, परिणीति चोपड़ा, दे आर द पार्ट ऑफ द कास्ट। आई विश वो अमेजिंग इंसान भी हमारे बीच में होता जिनके होने से बस मजा आ जाता है। खैर, सो शिल्पा शिरोडकर के लिए इट्स नॉट जस्ट अ कमबैक, 26 years के बाद बॉलीवुड में वापसी, वो भी सीधी कॉमेडी और इतने बड़े बड़े नामों के साथ। ऑफ कोर्स शी इज आल्सो बिग नेम, मतलब इट्स अ बिग फ्रेंचाइजी देखा जाए तो। अब देखना यह है कि इतने साल बाद स्क्रीन पर शिल्पा की जो एंट्री हो रही है तो ऑडियंस क्या बोलती है। अरे वाह, वेलकम बैक।
2: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।
1: या इतना लंबा ब्रेक लेकर आई है पर लग नहीं रहा अब गायब हुई थी, मतलब ऐसे भी बोल सकती है ना।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: समटाइम्स बॉलीवुड की पुरानी जो दोस्तियां होती हैं उनकी अपनी कहानी होती है, और कहानियां कब निकल के आती हैं, जब आप किसी मूवी के प्रमोशन में होते हो या आप किसी उनके कोसा से बात कर रहे होते हो। अब ये कहानियां इतनी फिल्मी होती हैं कि लगता है स्क्रिप्ट राइटर ने बैठ के लिखी हैं स्पेशली ताकि इसकी स्टोरी बन जाए। खैर, प्रीति जिंटा एक बहुत ही मजेदार पुराना किस्सा याद कर रही थी। अभी हाल फिलहाल बहुत जोर शोर से बंटवारा के प्रमोशंस चल रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड, इट्स लाइक वेरी ओल्ड, बड़ी पुरानी दोस्ती है इनकी। बॉबी देओल को एक बार उन्होंने कॉल किया रात को, पर फोन पता है किसने उठाया? जब 2.5 किलो का हाथ फोन उठाता है ना तो फोन उठता नहीं, उठ जाता है। खैर, अब सनी देओल ने फोन उठाया और सनी पाजी ने सीधा सवाल किया, ये कोई कॉल करने का टाइम है? ओहो हो, जया बहादुरी को यहीं से आइडिया आया था, ये कोई जगह है ये बात करने का? खैर, ये कोई टाइम है कॉल करने का? प्रीति जिंटा ने बताया कि उस वक्त वो बहुत घबरा गई थी, और आज भी जब दोनों बंटवारा 947 के लिए साथ में दिखाई दिए, वो पुरानी कहानी वापस से याद आ गई। सनी ने भी माना कि उन्हें भी ये इंसिडेंट याद नहीं था, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ फनी बॉलीवुड मेमोरी, क्योंकि अब यही सनी एंड यही प्रीति बहुत ही अलग और बहुत ही सीरियस कहानी को लेकर के साथ में आ रहे हैं। हालांकि बॉबी और प्रीति की दोस्ती बहुत ही पुरानी है, क्योंकि सोल्जर सोल्जर से मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा के ले गई थी। पर फिलहाल बंटवारा 1947 राजकुमार संतोषी की फिल्म है। 1947 के पार्टीशन के बैकड्रॉप में इसको सेट किया गया है, एंड यस, फिल्म में सनी देओल है, प्रीति जिंटा है, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल ऐसे कलाकार हैं, एंड आमिर खान तो इसके प्रोड्यूसर हैं ही। सिंगापुर में रहने वालों के लिए बात बहुत ही खास है, बिकॉज हिंदी सिनेमा लवर्स विजन डिस्क्स प्रेजेंट बंटवारा आइलैंड वाइड ऑन 14 अगस्त। पार्टीशन के उस बेहद इंपॉर्टेंट कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का आपके पास अमेजिंग मौका है। तो प्रीति की वो लेट नाइट फोन कॉल वाली कहानी सुनकर आप हंस लीजिए, लेकिन 14 अगस्त को थिएटर में बैठ के वो कहानी जरूर देखेगा जो आपको हंसाएगी तो डेफिनेटली नहीं, पर आपको हिस्ट्री, इमोशंस, रिश्तों की कहानी

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Musti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Musti 24/7.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कुछ बॉलीवुड के रियूनियंस ऐसे होते हैं ना, जिनको देखकर लगता है अरे भाई इतने साल कहाँ थे आप, है ना। अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान, ये दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं बहुत साल बाद आ रहे हैं, बहुत साल पहले देखा था इनको, 18 साल बाद आ रहे हैं, कहाँ थे आप। दोबारा तिबारा आते तो बोलते ना हम आफ्टर 18 ईयर्स। आपको पता है आखिरी बार तशन में आए थे दोनों, और उसके पहले मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में आए थे, और अब ये जोड़ी लौट रही है। लेकिन इस बार कोई लाइट हार्टेड बॉलीवुड रोमांस लेकर नहीं आ रही है। द नाम इज हैवान, नहीं वो तो शैतान था सॉरी, ये हैवान है। डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, 12 अगस्त को इसका टीजर आने वाला है, यानी कि आज। नाउ टीजर से पहले जो पोस्टर सामने आए हैं, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ा दी है उन्होंने। सैफ इस बार एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट के रोल में है, अक्षय एक कैरेक्टर कर रहे हैं जो कि बहुत इंटेंस है, ऑन अ डार्कर साइड है। इस बार वो ये बनने वाले, मतलब स्क्रीन पर एक तरफ तो वो इंसान है जो देख नहीं सकता पर सिखा सब कुछ सकता है, और एक तरफ वो है जो शायद अपनी हैवानियत में कुछ भी करने को तैयार है। तो इस बार उलट गया मामला। अब देखो प्रियदर्शन का नाम आया है तो एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं। हैवान 2016 की मलयालम थ्रिलर ओपम से इंस्पायर्ड है, प्रियदर्शन ने उसको भी डायरेक्ट किया था। सो आफ्टर 18 ईयर्स अक्षय और सैफ वापसी कर रहे हैं, दोस्ती कम मुझे डेंजर ज्यादा लग रहा है। देखते हैं टीजर क्या दिखाता है, और टीजर में आप क्या देखते हैं।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
5: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फेस्टिवल्स का मौसम है भाई, और त्योहारों की तैयारी सिर्फ घर सजाने तक तो रहती नहीं है, है कि नहीं? कुछ मीठा चाहिए, कुछ हेल्दी चाहिए, घर के लिए ग्रोसरीज भी चाहिए, क्योंकि लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि गणपति बापा आएंगे। जब तैयारी बापा को लाने की चल रही हो तो शॉपिंग लिस्ट देखो लंबी होनी तो बनती है, ऐसे ही छोटे मोटे में आप नहीं कर सकते काम। सिंगापुर में आपकी फेस्टिव शॉपिंग को हम थोड़ा आसान बना सकते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट बना सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, जीजी मार्ट को अपना पर्सनल ग्रोसर बनाना है, क्योंकि वो है यहाँ पे ना। आपको मिलेंगे रोजमर्रा के ग्रोसरीज के साथ साथ गुलकंद, जामुन हनी, जामुन जूस, बेरी हनी, फॉरेस्ट हनी, अजवाइन हनी, चिया सीड्स, करी लीव्स पाउडर, रागी बिस्किट, तुलसी, फॉरेस्ट बेरी हनी, मतलब ओ माय गॉड, आप समझ रहे होंगे कि मैं जो लिस्ट बताई वो कितनी लंबी है ना। और हाँ, गणपति बापा को लाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तैयारी कर रहे हैं, आइडल चाहिए, बुकिंग इज अवेलेबल। बुकिंग के लिए डेट्स हैं 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th ऑफ सितंबर। और ये जो आइडल का प्राइस है दैट इज $50 से लेके $120 तक, और हर आइडल के साथ में एक फ्री पूजा किट भी इंक्लूडेड है। तो इस फेस्टिव सीजन में शॉपिंग बप्पा को घर लाने की करनी हो या बप्पा के साथ साथ पूरा ग्रोसरी पैंट्री भरना हो, जो कि होना भी चाहिए बिकॉज पीपल विल कम टू मीट बप्पा, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। आप जा सकते हैं ggmartonline.com पे, या फिर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085657 पर, या फिर आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं ggmartonline.com से। कॉल या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं बुकिंग्स, नंबर इज 8085657। तो जीजी मार्ट अपना पर्सनल ग्रोसर इसको बना लीजिए, इट्स फ्रेश, इट्स हेल्दी, इट्स एवरीडे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज, मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक शो के थर्ड एंड लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी किसी को बेहतर फील कराने के लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसके पास बैठ जाना इज इनफ। एंड शायद ये बात इंसानों से पहले जानवर समझ जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले हमने प्लश को अपने दिमाग से निकाला और अब जो ये आया है ये दिमाग से ना जाए तो बेहतर है। एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट कैमरा में कैप्चर हुआ जहाँ पे एक अल्बिनो गोरिल्ला अकेला बैठा है, थोड़ा उदास है, थोड़ा अलग थलग सा है, और तभी कुछ बेबी गोरिल्लास जो है उसको नोटिस करते हैं और फिर जो हुआ वो देखकर आप स्माइल करेंगे क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे जरूर मेरे बताने के बाद। छोटे छोटे गोरिल्लास उसके पास आए, उसको हक किया, उसके आसपास बैठ गए जैसे कि कह रहे हो, हे यू नॉट अलोन बडी, वी आर राइट हियर। अब इस पूरे मोमेंट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एनिमल लवर्स जो है इसको देख के बस यही कह रहे हैं कि समटाइम्स कंपेनियनशिप इज द बेस्ट काइंड ऑफ कम्फर्ट। सच कहें तो सिर्फ गोरिल्लास के क्यूट लिटिल मोमेंट्स नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि किसी लोनली इंसान के लिए भी शायद हमारी प्रेजेंस बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकती है। तो अगर आज आपको कोई बड़ा क्वाइट, थोड़ा अलग थोड़ा लो फील सा दिख रहा है ना कोई इंसान, तो शायद आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो उसके पास जाइए, बैठिए, हाय, दैट्स इट।
2: बेखबर बेखबर वो कश्तियां हमारी लुटा कर आ गई।
1: क्योंकि कभी एक छोटा सा हग, एक छोटी सी कंपनी आपका पूरा दिन बदल सकती है। What a beautiful thought, right?

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10।
6: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
0: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: कभी कभी कोई आउटसाइडर आपके अपने देश के बारे में कोई ऐसी बात कह देता है कि हमें अपने खुद के देश को लेकर थोड़ा और प्यार और गर्व सम्मान सब बढ़ जाता है। बट वाई डू वी नीड वैलिडेशन, कभी कभी मैं सोचती भी हूँ। खैर, मिलाती हूँ मैं आपको एक ऐसे शख्स से, बताती हूँ उसके बारे में। एक जर्मन अंकल है जिनका इंडिया से कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो 150 बार जा चुके हैं इंडिया, 150 टाइम्स। मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ इंडिया घूमने नहीं आते, उन्हें हिंदी आती है, उन्हें मराठी भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, वो भोजपुरी में भी बात कर लेते हैं। और बातचीत के दौरान जो उनका अंदाज होता है वो इतना देसी होता है, माँ कसम ऐसे बोलते हैं वो, माँ कसम 150 टाइम्स गया था मैं, बकायदा इंटरनेट का दिल जीत चुके हैं भाई वो। अब जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है वहां पे ऐसा, क्यों जाते हैं आप बार बार, उनका जवाब था बहुत इंटरेस्टिंग। वो वेजिटेरियन है और उनके हिसाब से इंडिया वेजिटेरियंस के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मेरा भारत महान, ये उन्होंने कहा आखिर में। भैया जर्मन अंकल, ऑफिशियली आपने तो दिल जीत लिया। कभी कभी ना किसी देश की खूबसूरती वहाँ के मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट स्पॉट से नहीं होती है, वो होती है वहाँ के लोग, वहाँ की भाषाओं, खाने पीने और अपनेपन से, जो किसी दूसरी कंट्री के इंसान को आप तक इतना खींच लाए कि वो माँ कसम बार बार आए।
2: आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए।
1: राइट, लिटरली माँ कसम।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh
2: Mehra. राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। Masti Media Academy is now open for admissions. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, ये तो प्योर रेडियो मस्ती मोमेंट है यार। आप ऐसे कह सकते हैं, कभी कभी ना कॉन्फिडेंस उम्र देखकर नहीं आता है, और ये जो छोटा सा चैंपियन है ना इस बात की, वो याद दिला रहा है। चीन के किंडरगार्टन में मिलिट्री इंस्ट्रक्टर जो है बच्चों के साथ रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे। आई लव दिस गेम। और प्राइज था हर जीत पर एक कैंडी। छोटी सी बच्ची आगे आई और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने पहला राउंड खेला, जो जीत गई। दूसरा जीत गई, तीसरा जीत गई। बेचारे इंस्ट्रक्टर ने सोचा, ठीक है स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। मैडम का कॉन्फिडेंस ऐसा था, 5 राउंड लगातार जीते। PhD किया अगली ने रॉक पेपर सीजर पे। इंस्ट्रक्टर ने स्ट्रेटेजी बदली, यहाँ तक कि बेहतर फोकस करने के लिए खड़ा भी हो गया खेलने के लिए। लेकिन बच्चे का जो विनिंग स्ट्राइक था ना, जो स्ट्रीक थी, रुकी नहीं रही थी। हर जीत के साथ एक कैंडी, या वो कैंडी कलेक्शन नहीं बढ़ा रही थी, वो कॉन्फिडेंस दिखा रही थी। वीडियो देखकर एवरीबॉडी इज आई एम श्योर लाफिंग एंड वेरी हैप्पी। एंड आज की शायद सबसे बड़ी डिफीट मिलिट्री इंस्ट्रक्टर की नहीं है, कैंडी सप्लाईज की हुई है जो उसके हाथ से चली गई।

ऑनेस्टली छोटे से मोमेंट आता है लाइफ में और अच्छा लगता है, और आपको तब रियलाइज होता है कि जहाँ कॉम्पिटिशन है समटाइम्स वहाँ लाफ्टर भी है, और बच्चे से इतना सिंपल फन, वाओ.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वाल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: जाने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये जाने का वक्त हो चुका है। आपके अंदर माइक के सामने बोलने का सपना है, साफ शब्दों में कहूं कीड़ा है सपना नहीं है, क्यूरियोसिटी चलिए मान लीजिए, या सिर्फ माइक के सामने बोलने का नहीं, रेडियो, पॉडकास्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रेजेंटिंग, एमसी मतलब इवेंट होस्ट, वेल मस्ती मीडिया एकेडमी में सिर्फ आप बोलना नहीं सीखते हैं, यहाँ पे आप सीखते हैं कैसे बोलना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अपनी आवाज को पहचान बनाना है, साथ में जो बोल रहे हैं उसको लिखना कैसे है, स्क्रिप्टिंग कैसे तैयार करनी है, एक ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है, बेटर वर्ड्स, बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, बेटर थॉट्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिक से एडवांस तीन लेवल्स आपको मिलेंगे। शुरुआत होती है वॉइस, स्पीच, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से, फिर आप जाएंगे प्रेजेंटेशन, होस्टिंग, इंटरव्यूइंग, स्टोरी टेलिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं। एंड देन एडवांस लेवल पर आपको लाइव होस्टिंग, सिम्यूलेशंस एंड स्टूडियो सिस्टम्स, शो प्रिपरेशन, हैंड्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग एंड पर्सनल कोचिंग सब मिलेगा। सबसे खास बात है ये ट्रेनिंग एक्टिव ब्रॉडकास्टर्स से सीखने का आपको मौका मिलेगा एंड रियल स्टूडियो एनवायरनमेंट का एक्सपोजर भी आपको ये हम मौका देंगे सीखने के लिए। मस्ती मीडिया सिंगापुर के पेज पर आप जाएं और बाकी की इन्फॉर्मेशन जरूर देखें। फिलहाल के लिए शो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं हूँ आपके आरजे तिरकिटधा मुग्धा, आप मेरे साथ यहाँ पर थे पूरे सफर में, दिन को थोड़ा म्यूजिकल बनाया, थोड़ा स्माइल दी, और याद रखिये हर दिन एक कहानी लेकर आता है। तो फिलहाल अभी के लिए इजाजत, शो कहती हूँ बाय बाय, अगले शो में फिर करेंगे मुलाकात। स्टे ट्यून टू रेडियो मसी 24/7 लाइव, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस रुक जाती है, फिर कोई और आ जाता है।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।

है दिल मेरा पत्थर का, ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

भी दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता। आमा हासला A1 लाइफस्टाइल A1 ऐ मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ। हिट

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट आउट

0: Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: ना
0: करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: नाचने का मन है, मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट आउट।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: लेट्स गो यू ऑलरेडी नो
5: मेरी आशिकी
6: चाहूं मैं

0: सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे
1: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
0: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म यू सी Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live. Then.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 AM onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh
5: mein raho. Mere Karan Arjun aayenge.
6: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
7: भूल

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है, मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: हेलो हेलो, क्या हाल क्या हाल. हेलो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. भाई 5:00 हो चुके हैं, 4 मिनट में खुद ही हेलो हेलो हेलो हेलो कहीं जा रही हूँ. यहाँ पे ध्यान ही नहीं आया कि एक्साइटमेंट में जो है माइक का बटन मुझे जो लग रहा था ऑन वो ऑन ही नहीं था. वेल हेलो हाय वेलकम नमस्ते. 5:00 हो चुके हैं यहाँ पे, 4 मिनट. वेंसडे वाली शाम हम लोग पहुंच चुके हैं. 12 अगस्त हो चुकी है दोस्तों. आप बिलीव करोगे, ये तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही हम आधे महीने तक पहुंचने वाले होते हैं, वी फील लाइक कि ओह माय गॉड, आधा महीना भी, अगस्त का ऑलमोस्ट आधा महीना कंप्लीट होने जा रहा है. माय गॉड. बट बातें और जो है गाने और हमारा ये जो वक्त एक दूसरे के साथ हम बिताने वाले हैं टिल 8 PM, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली स्पेशल लाइक एंड एज ऑलवेज. बट बताइए भाई, आपका दिन आज सुबह से क्या है. मुझे तो आज सुबह से ऐसा कहिए कि सांस लेने की भी फुर्सत जिसको कहते हैं वो भी नहीं मिली है. देयर आर दोज डेज व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग. ऑल आई डिड वाज, जब मैं खड़ी हुई, जब मेरे को वॉशरूम जाना था, दैट वाज द ओनली वॉकिंग आई हैड डन टुडे. एंड आई एम नॉट एबल टू बिलीव माई सेल्फ. मैं कह रही हूं मैं, ठीक है, आपके कानों पर भी यकीन नहीं होगा आपको जब सुनेंगे आप मेरी जुबान से कि आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू जिम टुडे. I am, because मुझे लग रहा है कि देखो

that is going to be a good breather from the whole hectic day, which it has been like totally, totally crazy. But yes, ye 5 se 8 aapka aur mera de-stress karne ka time. So I'll make sure that I keep you updated. I'll make sure I'll play good songs and let's talk. है ना 9158963 के दरवाजे जैसा कि आपको पता है हमेशा ही आपके लिए खुले हुए, लेकिन फिलहाल के लिए लेट अस पुट एवरीथिंग ऑन फर्स्ट क्लास क्योंकि गाना भी फर्स्ट क्लास कमिंग अप नेक्स्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7. गुड इवनिंग.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
4: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space, Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Take a break, laugh a little, and vibe a lot, because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
5: एक मिनट, क्या सुना मैंने? कौन, किस पे, क्या, क्रश, हेलो, टॉम क्रूज, मल्लिका शरावत? वैसे एक सांस में ये दोनों नाम साथ में भी क्यों आ रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना आप होने वाले हो इस बात को सुनकर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतरा आपके साथ। 5:00 हो चुके हैं यहाँ पर 16 मिनट। भाई मल्लिका शरावत जो है ये, अच्छा इनका अपना अलग ही जॉनरा है। एक हमारी कंगना रनौत है, वो जब भी आती है तो उनको मतलब बिल्कुल सही कंट्रोवर्सी क्वीन का जो है नाम दिया हुआ है। मल्लिका शरावत भी जब जब आती है इंटरनेट बजिंग करके छोड़ के जाती है। सो वेल भाई, मल्लिका जो है कैजुअली, अभी कोई एक तो रियलिटी शो चल रहा था तो वहां पे वो आई हुई थी, एंड वेरी शी कैजुअली क्लेम्ड दैट हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज, जी हाँ नाम आप सही सुन रहे हो, टॉम क्रूज, कहती है टॉम क्रूज हैड अ क्रश ऑन मी। ओ माय गॉड, उनका कॉन्फिडेंट डेड एंड डिलीवरी जो है, बड़े ही हिलेरियस रिएक्शंस हर जगह पे। मैं तो शॉक्ड हूँ, मेरे हिलेरियस रिएक्शन शायद इसके बाद आएंगे। इट ऑलवेज हैपेंस लाइक दैट, इट स्टार्ट्स लाइक दैट। और बड़े मतलब फ्लड ऑफ मीम्स जो है वो ऑनलाइन जो है बिल्कुल आने लगे हैं कि मैम क्या ही कह रहे हो आप, और क्या ही कह दिया है, मतलब ये जो आप ले रही हैं कहाँ से आया है। बट लाइक दीज आर काइंड ऑफ कॉमेंट्स पीपल आर राइटिंग डाउन। आई थिंक देयर वाज दिस हमारी उर्वशी राउटेला, वो भी, उनका भी अपना एक जॉनरा है। सो अभी उनका उतना नहीं चल रहा है, उनकी रोलेक्स की घड़ी बड़ी से उनका जो है सब कुछ काफी सेटल्ड सा मामला है। तो मल्लिका शरावत ने कहा कि आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग सो दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मी ऑन सोशल मीडिया। भाई टॉम क्रूज को अब कौन टॉम क्रूज से वेरीफाई करने जाएगा, है ना? ये भी तो वो बात हो गई ना, कौन जाएगा पूछनेगा कि सर डू यू नो। अरे किसी ने अगर ऐसा कर भी लिया, एंड देयर आर पीपल, ऐसे इस हद तक वाले नोजी लोग भी होते हैं कि नहीं नहीं हम तो जान के रहेंगे और सच अगर निकल आया ना ये दोस्तों, तो फिर मतलब वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डन। अब बात ये है कि क्रश तो मुझे भी है टॉम क्रूज पे, बस फर्क इतना है कि टॉम क्रूज को पता नहीं है। या लेट्स मूव ऑन, गुड इवनिंग, ये मिडवीक ब्लूज जो हमें उड़ाने ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: अभी ऑफ माइक भी गाना ही गा रही थी यही वाला। 5:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में। चलिए बताते हैं इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा नेवा ई टुवर्ड्स एमसीई आफ्टर चलान बुनले, अवॉइड करें लेन नंबर 3। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी एट बुकित बतौक रोड एग्जिट, और मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन पीआईई टुवर्ड्स इटवास आफ्टर थॉमसन रोड, अवॉइड करें लेन नंबर 4। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। यहां पर धीरे धीरे सब आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते हुए जा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वेंसडे इवनिंग। यस, मिड वीक पहुंच चुके हैं, छोटा हफ्ता है। फ्राइडे जस्ट यहाँ से एकदम बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। मजे करेंगे 8 बजे तक और लुट ले जाएंगे, क्योंकि धुरंधर का साउंड ट्रैक से यही गाना बिल्कुल आ रहा है आपके लिए।
3: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: People can be really, really funny. I mean, creative वो जाते हैं एक अलग ही level पे. And I loved what this guy did. I'm now, I don't know whether he did it from the point of view कि मैं कुछ viral video बनाऊंगा या something. But then idea was pretty creative, I must say. Radio Masti 24/7, मैं Antra के साथ यहाँ पर Midweek Blues चल रहा है. Mood change करेंगे. कैसे करेंगे? भाई China में जो है typhoon आया, ठीक है. तो typhoon डॉल्फिन जो है काफी मतलब जगह जगह पे आपने कई सारे जो है वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे. तो हमारे ये भाई जो है जो अपार्टमेंट में एक लंबी सी बिल्डिंग में बिल्कुल रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो बाहर उनका बालकनी का जो खिड़की वाला एरिया है ना, इट वाज ऑल ग्लास कवर्ड जो शटर्स के साथ एंड एवरीथिंग. तो फिर भाई ने कुछ ऐसे किया कि भाई उनको टाइफून वार्निंग्स तो आ ही रखे थे, तो हवा ववा जो है काफी तेजी से चल रही थी. भाई ने लेकर सोप वाटर से स्प्रे कर दिया आउटसाइड द जितना भी उनका ग्लास का जो है शटर वगैरह का कवर है. एंड ही इज नाउ माय क्वेश्चन इज लेटर दैट हु वाज टेकिंग दिस वीडियो, मतलब क्योंकि ये वीडियो काफी दूर से लिया गया है. सो दैट्स वेयर आई वाज लाइक कि ये तुम्हें लगता थोड़ा सा तो स्टेज और प्लान लग रहा है. बट एनीवेज, तो ये भाई क्या करता है, भाई ने पूरे स्प्रे से जो है साबुन वाला पानी बाहर के विंडो ग्लास शटर पे बिल्कुल फैला दिया एंड फिर कर दिया खिड़कियां बंद चारों तरफ से. टाइफून आया, तेज हवा, बारिश, ये वो. भाई फ्री में नेचर ने फ्री में बाहर से भाई का पूरा बालकनी का ग्लास विंडो का शटर क्लीन कर दिया. बिकॉज ही पोस्टेड लेटर का भी जो वीडियो एंड द ग्लासेस आर लाइक स्क्वीकी क्लीन. आई मीन क्रिएटिव, राइट? यस. बट वेल, इवन इफ अगर उसने ये सोचा होगा और सोच समझ के वायरल करने के लिए भी किया होगा, आई हैव टू गिव इट टू हिम. I mean, what? Really? You really made use of typhoon? जहाँ पे लोग सब बच रहे थे, भाई ने कहा कि आज तो मेरे बालकनी के शीशे वाले शटर साफ हो गए. Too good. Too good, I mean. Radio Masti 24/7 live जो है. You have to actually see the video to believe it. It's just kind of insane. Well, इसी बात के साथ, thank God. मुझे आते ideas, लेकिन ऐसे crazy ideas कभी नहीं आए. Good evening.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट यू बाय विजन डिस्क्स सिंगापुर।
5: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
6: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
7: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
8: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
9: भैया रवि किशन ना अलग ही लेवल के वायरल हो रखे हैं, एंड फॉर ऑल द अमेजिंग रीजंस आई टेल यू। आई मीन love with the bindaspan of this guy. Radio Masti 24/7, yes it is midweek blues jo bhaga rahe hain hum dheere dheere karke. Aur bilkul antra aapko batayegi ki I think kal ke show mein maine bataya tha ki how and why and kal ya parso basically isi hafte bataya tha Ravi Kishan jo hai wo Gen Z's ka jo hai memes wo bana rahe hain aur Gen Z ke beech mein wo kafi zyada accept kar liye ga. It's a big thing, Gen Z accepting you is a huge deal and they are showering a lot of love because unke बात करने के तरीके से और इन सारी चीजों से ना वो मीम्स बना रहे हैं, ही इज लविंग इट कंप्लीटली। कहता है ना कि आप अनअपोलोजेटिकली अपने आप, यू बिकम जस्ट काइंड ऑफ योरसेल्फ एंड यू यूज टू थिंक दैट आई एम फनी, लेकिन आज तक कोई नहीं आपको फनी समझता था, लेकिन फाइनली आपको लोग आपके ह्यूमर को समझने लगे हैं। सो जब ये वायरल हो गए पूरी तरह से तो उनकी वाइफ का रिएक्शन जो है वो ऐसे ही कह रहे कि पत्नी हमको बोली कि अगर तुम घर से जो है निकलते हो तो वायरल हो जाते हो, तो वो बच्चों को बोल रही थी कि इनको यही कमरे में लॉक कर देते हैं। ना ये निकलेंगे ना ये वायरल होंगे। आई थिंक या वायरल होने का जिम्मेदारी काफी काफी बड़ा होता है। सो बट But well, it is what it is. आप रहिए मेरे साथ और रेडियो मस्ती 24/7 and yes, we will continue this.

0: बड़ा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
1: मैं कहती हूँ कि चैन से कोई नहीं जीने देगा हमें. मतलब सीरियसली 6 बजे के उस पार बिल्कुल पहुंच चुके हैं. मिडवीक ब्लूज चल रहा है. 6:04 हो चुके हैं. मैं अंशा यहाँ पर आपके साथ बनी हुई हूँ और मैंने आज यही कह के शो शुरू किया था कि भाई आज का दिन तो सुबह से बहुत ही ज्यादा क्योटिक गया है. सांस लेने भर तक की जो फुर्सत एंड क्वाइट लिटरली ऑल आई हैव गॉटन अप सिंस दिस मॉर्निंग ओनली टू गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक एंड आई हैव बीन जस्ट काइंड ऑफ ग्लूड टू द सीट एंड जस्ट वर्किंग एंडलेसली लाइक अ क्रेजी पर्सन एंड आई एम स्टिल सिटिंग. दो अभी जो है ये काम नहीं है. राइट, इट्स जस्ट अ वेरी वेरी गुड टाइम व्हिच आई एम स्पेंडिंग विद यू. बट जैसे ही होता है ना कि कभी कभी आपको जिंदगी में ऐसा लगने लगता है कि बस हो गया है बहुत ही ज्यादा. आई नीड अ ब्रेक. अब नहीं होगा. हमें चाहिए यहाँ पे हो. बस बहुत हो चुका है. तभी कुछ ऐसा आ जाता है. अब जैसे मैं सोच ही रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को जाना है वेकेशन. ठीक है. और तभी अमिताभ बच्चन जी ने अपना जो है पोस्ट अपलोड कर लिया और एट 83 ठीक है ही इज सेइंग कि ही इज वर्किंग 24 आवर्स स्ट्रेट कई कई दिनों में. एंड या एंड ही इज लाइक वर्क कम्स बिफोर स्लीप फूड एंड एवरी थिंग एल्स. उन्होंने कहा कि सम ऑफ हिज वर्क डेज हैव स्ट्रेच्ड फ्रॉम 7 AM अंटिल ऑलमोस्ट 7 AM ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग. 7 सुबह 7 टू अगले दिन के सुबह 7. एंड अपोलोजाइजिंग टू ऑल द फैंस अपने रेगुलर ब्लॉग्स वो इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं. ही एंड हिज कमिटमेंट्स मस्ट कम फर्स्ट इवन बिफोर स्लीप एंड फूड एंड ही इज करंटली बैक अपने जो क्विज शो है उसमें एंड कंटिन्यूइंग विद अदर फिल्म कमिटमेंट्स एज वेल. आई मीन 83 पे ही इज सेइंग दैट 24 आवर्स ही इज वर्किंग एंड या बट देन हिज इज हूज हूज एट द एंड ऑफ द डे. भाई ये उनका मतलब वो भी कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे. हम भी कुछ सोचकर ही कह रहे हैं कि हमें वेकेशन की जरूरत है, छुट्टी चाहिए, हमें डिमांड कर रहे हैं हम. हमारा हक है ये. जाऊंगी मैं भी छुट्टी पे जाऊंगी. आप देख लेना इस बार मैं करके दिखाऊंगी. पक्की बात है. जब आपको लगे किसी हफ्ते में ना मेरी आवाजें जो है ऑनर कम आ रही है तो समझ लेना, समझ जाना आप सभी लोग. ठीक है, चलो फिलहाल तो समझ जाओ कि गाने अगले आने वाले हैं शानदार ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.
1: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: एक घर, दो मजहब।
3: आप यहाँ नहीं रह सकते।
4: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
1: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
5: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
1: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th August आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
6: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
8: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
9: भाई कंगना दीदी ने क्या सोचा था कि कंगना दीदी बोलेंगी, बोल के वो निकल जाएंगी और हिंदी में बहुत सारा बोल के कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर उनकी छुट्टी जो है हो जाएगी, सब बातें सारी भूल जाएंगे और कोई कुछ इस पे आवाज नहीं उठाएगा। नहीं कंगना दीदी, ऐसे नहीं होता है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में अल्ट्रा आपके साथ यहाँ पर चल रहा है मिडवीक ब्लूज। भाई कंगना दीदी काफी जो है खबरों में रही क्योंकि उन्होंने जो है जेंजियों के ऊपर जब जंतर मंतर पे सारे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे, वो भी किसी के सामने नहीं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कुछ उन्होंने लिख दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था। अगर लिखना भी चाहिए था तो जो प्रयोग ऑफ द शब्द्स हैं उनको थोड़ा सा यू नो शी शुड हैव बीन अ लिटिल बिट सेलेक्टिव अबाउट दोस थिंग्स बिकॉज शी इज वन ऑफ दोस एडवोकेट्स की वो हमेशा लोगों को कहती है कि जब भी बोला करे सोच समझ के बोला करे, बट आई डोंट थिंक सो शी काइंड ऑफ अप्लाइज इट अपने आप के ऊपर। सो वेल, लेटेस्ट कुछ खबर ऐसी है दैट शी इज नाउ फेसिंग अ लीगल चैलेंज ओवर हर रिमार्क्स टारगेटिंग द जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स एंड यंग वुमेन। आफ्टर ये जो है ये एमपी एमएलए कोर्ट में इनका बिल्कुल वहां पे पेशकी लगा दी गई है। नाउ द कोर्ट हैज अग्रीड टू हियर द मैटर विद द नेक्स्ट हियरिंग व्हिच हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 21st। नाउ जब इन्होंने क्रिटिसाइज किया वीडियोज एंड द पोस्ट लिंक टू जेन ज़ी के लेड प्रोटेस्ट के ऊपर, कॉलिंग द कॉन्टेंट and puke inducing and describing the language as conduct of protesters as crass. दूसरे पोस्ट में शी रेफर टू भाई की एक सेक्शन ऑफ व्यू इतना ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गई है, इंडियन लड़कियां जनरेशन कटर होती जा रही है, वाइल मेकिंग कमेंट्स अबाउट देयर एजुकेशन, किसने इनको पैदा किया, लाइफस्टाइल, पर्सनल चॉइसेस। दीदी आप इस बार थोड़ा ज्यादा बोल गई है, मान लो ये बात, मान लो बार बार आके वीडियो बना के पोस्ट कर देने से मतलब ये तो मतलब वही बात हो गई ना, हमको यहाँ से लगता है कि बस करो, मतलब और वीडियो पोस्ट मत करो, बस हो गया, या तो बिल्कुल ही चुप हो जाओ ठीक है, या फिर ये जो तुम कर रही हो दीदी मत करो ना दीदी, नहीं आपको नहीं लगता है? एटलीस्ट आई फेल्ट लाइक दैट, या डोंट थिंग नाच लाइक दिस इज नॉट द टाइम, यू शुड नो वेयर टू कीप क्वाइट एंड व्हेन टू कीप क्वाइट एज

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: मैं और सलमान चीख चीख के गाना गा रहे हैं, अब वो वहां पे मैं यहाँ पर। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, और हर किसी को नहीं मिलता यू बैठे बैठे ट्रैफिक, वो भी वेंसडे इवनिंग को। 6:30 बज चुके हैं। चलिए सिंगापुर की सड़कों का हाल चाल बताते हैं। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन BKE टूवर्ड्स PIE आफ्टर मांडा रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर ऑन बार्टली रोड टूवर्ड्स ब्राडल बिटवीन अपर सेरेंगुन रोड एंड अपर पायालिबा पर मिलेगा व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन PIE टूवर्ड्स ट्वास आफ्टर थॉमसन रोड। सो वेल, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। कमिंग अप नेक्स्ट इज अरमान मलिक की आवाज, मूवी का नाम अजहर, एंड दे आर सेइंग ओए ओए, लेट्स गो।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: भाई, जिनको जो देखना होता है, जिनको जो सुनना होता है, वो देख और सुन लेता ही है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ वे. रेडियो मस्ती 24/7. यस, अंतरा आपके साथ मिडवीक ब्लूज. आप सुन रहे हैं 6:35 हो चुके हैं यहाँ पर स्टूडियो क्लॉक में. एंड आतिफ असलम, काफी दिनों से आपने इनका नाम नहीं सुना होगा. सो आतिफ असलम भी धीरे धीरे ही इज गोइंग टू बी बैक इन एक्शन एंड वी हैव लव्ड हिज वॉइस. सी, देखो, एक बाकी चीजें एक तरफ एंड देन ऑफकोर्स गाना और म्यूजिक जो है वो अपनी तरफ. I have loved his voice. I have screamed out loud. उनका एक गाना है एंड यूजुअली वो गाना जब लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बट somehow I really like that song. It's called हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, एंड ही इज लाइक रियली अलग ही लेवल का हाई पिच उन्होंने कर रखा है उसमें. सो वेल, एनीवेज, सो आतिफ असलम कहते हैं कि ही इज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दोज हु बैंड हिम इन इंडिया. एंड वो अपना बैन जो है अपना टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं. ही इज सेइंग इंडियन फैंस जो है जब वो बैन हुए, दे फिगर्ड आउट अ वे टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स VPN यूज करके. सर, शोइंग द म्यूजिक कनेक्शन, ऑफ कोर्स द इट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल दीज पीपल आर कमिंग बैक इनटू द म्यूजिक इंडस्ट्री. सी, चाहे अदनान हमारे हो या फिर आतिफ असलम हमारे हो, राहत साहब हो, धीरे धीरे करके जो है ये अपने कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, कोई नहीं. कहते हैं ना कि जब भी आपका कोई लाइफ में सिचुएशन हो तो उसको अपनी तरफ पॉजिटिव देख कर बदल लेने में ही समझदारी होती है. एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्ट what Atif Aslam also is doing and saying. इसी बात के साथ नहीं, Atif Aslam का बिल्कुल नहीं गाना चलेगा. मेरा दोस्त जो है वो tuned in है इस वक्त पर and my friend likes this song a lot. In fact, I like this song. In fact, हर 90s वाले बंदे और बंदी को ये गाना पसंद है. It is just so beautiful and it is Udit Narayan. And I will not say more. We will just listen to this gana and enjoy it. I know, yaar. Wednesday ko main already 90s ke mode mein aa jaati hu automatically.

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।
5: Take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
6: बंटवारा 1947। अब ये कहना बिल्कुल ही सही होगा, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन 1947। प्लस ऑफकोर्स 15 अगस्त आ रहा है, इट्स द परफेक्ट टाइम कि ये मूवी को इस वक्त रिलीज किया जाए। भाई 2008 की ये बात है, राजकुमार संतोषी साहब जो है वांटेड टू डायरेक्ट अ मूवी इन द अडैप्टेशन ऑफ असगर वजाहत का एक प्ले, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। उसमें वो संजय दत्त और विद्या बालन जो है उनको को बिल्कुल देखना चाहते थे एज हिज वाइफ, विद सलमान खान एंड नील नितिन मुकेश आल्सो गेटिंग साइंड। नाउ प्रोडक्शन डिजाइनर नितीश रॉय वाज बिल्डिंग अ सेट फॉर द मूवी इन हैदराबाद एंड एवरी लेन बाय लाइन एंड यू नो ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस इवन इलेक्ट्रिक वायर्स वर गेटिंग रिक्रिएटेड। बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च की गई ऑन लाहौर ड्यूरिंग द पार्टीशन एरा, इट वॉज गेटिंग डन सो एवरी डिटेल कुड काइंड ऑफ गेट रेप्लीकेटेड। लेटर 2012 में द कास्ट वॉज चेंज to Pankaj Kapoor, Manisha Koirala and Shahid Kapoor came into the project with Sanjay Dutt and Vidya Balan and Mukesh all exiting eventually. The film did not go anywhere. फिर 2014 में जो है फिर एक और कास्ट को रखा गया, 2015 में वापस से वो कास्ट एग्जिट हो गई। ये करते करते करते eventually वो मूवी बनी बंटवारा 1947, विच इज गोइंग टू गेट रिलीज दिस 14th ऑफ ऑगस्ट। हमारे सनी पाजी जो है वो नजर आएंगे प्रीति जिंटा के साथ, शबाना आजमी ऑल्सो, यू विल फाइंड हर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। एंड ऑल्सो सनी देओल के बेटे करण देओल एक्चुअली में उनके बेटे का रोल जो है वो करने वाले हैं इन द सेम मूवी, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 14 अगस्त को जो है वो बिल्कुल रिलीज होने वाली है एंड डेफिनेटली बनता है यार, वी हैव टू गो एंड वॉच समथिंग लाइक दिस। इसमें ना इतना नॉस्टैल्जिया था जब मैं इसका ट्रेलर देख रही थी एंड अभी सुन भी रही थी, दैट somehow I could connect with it and I love when thoda sa bhi relatability level kisi bhi cheez mein aa jata hai na. All thanks to Vision Discs Singapore jo hai for releasing it island wide 14th of August, bhulna mat, Bantwara 1947, it's gonna get released.

0: मेरा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज कर चेंज कर चेंज
1: Oh my God. All of these things reminds me of good old days. Radio Masti 24/7 Antrap ke saath 7 baje bilkul us paar hum log yahan par pahunch chuke hain. To kuch aisa hua, theek hai. Abhi hum log Batwara 1947 ki baat kar rahe the. So hamare Sunny Panji and Preeti Zinta, they are coming together and it's quite a good looking, you know, acha match lag raha hai usme and everything, and jis hisab se kahani badhti hai and everything, uske hisab se sab kuch acha acha dikh raha hai. So Preeti Zinta jo hai, unhone ek bada कमाल का मजेदार किस्सा शेयर किया. एंड इट वाज अराउंड वही 90s के टाइम पर जब ये लोग सब अपने अपने करियर में अच्छा जो है कर रहे थे, पीक में थे. तो प्रीति जिंटा एंड बॉबी देओल, ओ नहीं ओ नहीं ओ नहीं ओ तेरा रंग सोल्जर, वी ऑल नो दैट राइट. तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रीति जिंटा जो है उन्होंने कॉल किया, ठीक है, उनको करनी थी कुछ, तो उनको बात करनी थी, कहते कुछ तो मुझे जरूरी पूछना था एंड वो अगले दिन के लिए वो चीज हमें चाहिए थी. और मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी बॉबी को फोन करके जो है पूछ लेती हूँ. तो कुछ काफी देर रात हो चुकी थी और प्रीति जिंटा ने फोन मिलाया देओल फैमिली, मतलब उनके घर पे, और फोन किसने उठाया? फोन उठाया हमारे सनी पाजी ने, ठीक है. और सनी पाजी ने उठाकर सीधे बोला कि इतनी रात को बॉबी को फोन करने का कौन हो तुम, क्या मतलब बनता है ये? ओके. प्रीति जिंटा कहते मैंने तो फोन ही रख दिया उस टाइम पर, और मैं इतना ज्यादा डर गई सनी देओल की ऐसी गंभीर उससे सीरियस आवाज से. एंड देन शी वाज टेलिंग एक्चुअली सनी देओल कि एक बार ऐसा हुआ था. सनी देओल से कि मुझे तो याद नहीं है, बट आई कैन कम्प्लीटली इमेजिन सनी देओल उस तरह फोन से ऐसे करके सीरियस करके बोल रहे होंगे, मुझे तो याद आ गया कैसे हम लोग ब्लैंक कॉल्स करते थे और उधर अगर क्रश के पापा ने उठा लिया कि हेलो ओके काट दो बेटा. ये वो नहीं है, ये उनके पापा है. बट देन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग टुगेदर इन बटवारा 1947. क्या कमाल कमाल की छोटी छोटी बातें बताओ. अब वो धीरे धीरे करके ऐसे करके बता रहे हैं. सो क्यूट, सो वेरी क्यूट. हेलो, इतनी रात को बॉबी को. एंड बॉबी देओल का जो उन्होंने एक अपना बनाया हुआ था पर्सनालिटी, सो उनके घरों वालों को भी, मतलब देओल फैमिली को आदत पड़ी गई होगी कि किसी तो दीवानी का ही फोन आया होगा. अब कोई काम से फोन कर रहा होगा तो वो बॉबी के लिए नहीं होगा. Stay tuned to Radio Masti 24/7. Of course, we are just having a good time. That's what we are doing today.

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: एक घर, दो मजहब.
3: आप यहाँ नहीं रह सकते.
4: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है.
1: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं.
5: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
1: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर. रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू. ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर.
6: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे.
7: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
8: चेक इट आउट.
9: टेक अ ब्रेक, लाफ अ लिटिल एंड वाइब अ लॉट, बिकॉज़ वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर. मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
10: So I was having this discussion with one of my friends a few days ago, and I was like, ki ek baar to show pe aapke saath bhi is baare mein baat karna bilkul banta hai. 7 bajkar ho chuke hain, 17 minute, radio masti 24/7, midweek blues chal raha hai, main hu Antra yahan par aapke saath, and we all, you know, plan for our holidays and vacations. Aur jab dheere dheere aap vacation apne holiday time ke paas aane wale hote ho, to jaise hi aapki flight book hoti hai, hai na, aur kabhi kabhi to kuch log usse pehle bhi, matlab aapko destination pata hota hai ki is jagah pe jana hai, तो आप इंस्टाग्राम पे यू नो काइंड ऑफ यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर जैसे फॉर एग्जांपल बार्सिलोना. तो बार्सिलोना के बारे में ये वो, या बैंकॉक के बारे में ए बी सी डी, ये सारी चीजें. एंड देन योर एआई अंडरस्टैंड्स कि दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रैवल टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. तो अब आपको सिर्फ जैसे उसी डेस्टिनेशन के सारे रील्स एक के बाद एक जो है आने लगते हैं. नाउ आई पर्सनली फील दैट समटाइम्स इतना इन्फॉर्मेशन, लाइक इतने सारे वीडियोस देख के, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज वीडियोस आर लाइक द ड्रोन शॉट्स, एंड पानी जितना है उससे भी ज्यादा नीला दिख रहा है, एंड यू नो इट्स ग्रीनर देन द ग्रीन, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली डन. इट्स एडिटेड, इट हैज फिल्टर्स, इट हैज लाइक, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच ओवर द डेस्टिनेशन आपको लगता है कि आपने बहुत सारा कुछ ऑलरेडी देख लिया है. सो तो वो एक्साइटमेंट जिससे आप जाते हो ना, वो आपको नहीं लगता, वो थोड़ी सी कम हो जाती है. मेरी एक्चुअली लिटरली बहस हो गई इस मामले को, लेकिन नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता. बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है दैट यू नो मैंने तो इसमें ऐसे ही किया था. कुछ ऐसा एक लाइव ग्लासेस दे दो मुझे जैसा इंस्टाग्राम पे देखा था, वो उधर जाके पेरिस फिल्टर वाला ग्लास लगा लूंगी, एंड आई विल बी एबल टू काइंड ऑफ सी एवरीथिंग जैसा कि उसके रील्स में देखते हैं. एंड कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, आपको लगता है कि ये जगह तो इतनी सुंदर थी, लेकिन यहाँ पे पहुंच के लग रहा है कि उतनी सुंदर तो है नहीं. भाई वो जो दिखाई थी वो एडिटेड वर्जन था, लाइक विद द फिल्टर्स एंड एवरीथिंग, स्टूडियो शॉट एंड ऑल दोस थिंग्स. ये रियलिटी है, एंड हु विल टेल दैट. कई बार होता है हम जाके फोटोग्राफ्स कहीं भी किसी चीज की खींचते हैं, वी ऑल मास्टर द फोटोग्राफ, वी जस्ट डोंट पुट इट एज इट इज. सो मुझे लगता है कि जब आप वेकेशन पे जा रहे हो तो थोड़ा सोशल मीडिया जानबूझ के कम कर देना चाहिए, जस्ट टू कीप द एक्साइटमेंट अप फॉर द प्लेस यू आर गोइंग टू, बिकॉज द थिंग एंड एक्साइटमेंट ऑफ पता नहीं क्या देखेंगे वहां जाकर, उसका मजा ही अलग है यार. एंड देन यू गो वाओ दिस is pretty, like this is amazing, this is pretty amazing. What do you think about it? Tell me, aap bilkul bata sakte ho apne bhi. Main pakka aapke saath nahi ladungi is baat pe, main to sirf apni baat rakh rahi thi sabke samne, so that yeah my POV is quite clear. Radio Masti 24/7, yes main bhi dheere dheere apne holiday mode pe aa rahi hu, jaungi main bhi jaungi dosto, tension mat lo. Good evening.

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: कोई मुझे रोक लो, कोई मुझे रोक लो। मैं ना कल के सारे गाने धीरे धीरे करके आज ही प्ले कर दूंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अंतरा बिहेव योरसेल्फ। वेंसडे वाला शो है मिडवीक ब्लूज, ये इसका नाम है। ट्रैफिक अपडेट का टाइम हो चुका है। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको इस वक्त मिलेगा ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास आफ्टर एडम रोड। हैवी ट्रैफिक की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स इटवास बिटवीन BKE एंड थॉमसन रोड। और एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन AYE टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर टुवर्स वेस्ट रोड। अवॉइड करें लेन नंबर 5। सो वेल, कमिंग अप नेक्स्ट इज इन द ब्यूटीफुल गाना एंड नॉट द 90s। या आई एम ट्राइंग टू मेक कंट्रोल कंट्रोल उधर कंट्रोल टाइप वाली फीलिंग आ रही है। कंट्रोल अंतरा कंट्रोल।

0: love songs.
1: Whatever you do, always give 100%. Unless you are donating blood. ये है मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7. आओ मूड चेंज करें.
2: एक वक्त आपका था गोविंदा जी, एक वक्त आप चल रहा है सुनीता जी का. ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट गेटिंग एवरी सिंगल डे, कुछ नया ना कुछ नया आता ही रहता है. वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7. अंतर आपके साथ मिडवीक ब्लूज. ब्लूज भाई, आई थिंक गोविंदा जी की जिंदगी में फिलहाल आसपास काफी ज्यादा घूम रहे हैं. सो नाउ द थिंग बिटवीन गोविंदा जी एंड सुनीता जी, सुनीता जी उनकी वाइफ जो है, एक वक्त था जब गोविंदा जी वॉज वेल नोन फॉर हिज आर्ट फॉर्म एंड एज एन आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग. टिल डेट उनको इस चीज से जाना और माना जाता है. बट नाउ आजकल के टाइम के अगर देखा जाए तो सुनीता आहूजा हैज शी हैज मेड हर अपना दबदबा और अपना एक पर्सनालिटी से, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से एंड एवरीथिंग, और उनके हंसने के तरीके से, मतलब बेसिकली लोग अब उनको सुनीता के नाम से पहचानते हैं, इससे नहीं पहचानते हैं कि वो गोविंदा की बेबी है. एंड दैट्स अ बिग डील एंड आई एम सो सो हैप्पी फॉर हर. बट हैविंग सेड दैट, गोविंदा हाल ही में एक लेटेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे. उनको एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया एक बंदी के साथ. एंड ऑफकोर्स आपको तो पता ही है, जब इस ग्लैमर की दुनिया में कुछ ऐसा होता है, किसी की नजर पड़ती है तो वो वायरल होते हुए समय नहीं लगता है, और जैसे ही ऐसी कोई बात होती है तो सीधा उनके काउंटर पार्ट के पास जाता है. तो देखिए कैसा लग रहा है सुनीता जी आपको, गोविंदा जी और उस लड़की को लेकर इतनी बातें वहां पर चल रही है, कैसा फील कर रही है आप? ना सुनीता आहूजा, बीइंग सुनीता आहूजा, शी हैज दिस शार्प रिएक्शन व्हेन शी वाज आस्क्ड अबाउट गोविंदा बीइंग स्पॉटेड एयरपोर्ट में. एंड उनका जो है कुछ उनके बीच में है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें फैल रही है. एंड पाप्स के साथ, यानी कि पापराजी के साथ, कहती है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसीलिए ये सब करता है वो, दिमाग ही. या दैट्स व्हाट शी सेड, दैट ही हैज जस्ट काइंड ऑफ लॉस्ट इट. नाइस, वेरी नाइस. ये तो मतलब पर ऐसा भी नहीं है फिर द थिंग नाउ दे कंफ्यूज अस अ लॉट एज वेल. हैविंग सेड दिस, ओके, आज ये कह रही है, अभी थोड़े टाइम के बाद उनका एक इंटरव्यू कहीं पे आ जाएगा कि नहीं नहीं गोविंदा तो ऐसे ही है, सीधा है, वो सब उसको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, है तो मेरे बच्चों का बाप ही ना, तो मेरे तो मैम कौन सा साइड में हो आप, विच साइड शुड बी चूज. करेक्ट, तो इनका ये देखे, हम अपना देखें, गाने देखे नहीं, गाने सुने. लेट्स गो, ज़िंग दैट.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
1: This Indian Independence Day, एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
3: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: एक घर, दो मजहब।
4: आप यहाँ नहीं रह सकते।
5: मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है।
1: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
6: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
1: बंटवारा 1947, स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर।

0: take a break, laugh a little, and vibe a lot because weekend is almost here. Midweek Blues on Radio Masti 24/7. Aao, mood change kare.
1: हाँ जी हाँ जी, अब वो वक्त आ गया है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ से खिसक के जाना पड़ेगा एंड आई वाज कंप्लीटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट मी टेल यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7 मिडवीक ब्लूज आप यहाँ पर सुन रहे थे। भाई बहुत ही अजीब सा परिवर्तन जो मेरे अंदर आया हुआ है। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई यहाँ पर आपके साथ इतना खूबसूरत सा वक्त बिताएंगे, बिताने के बाद सीधे यहाँ से जिम चले जाएंगे बिकॉज आज सुबह से कोई मूवमेंट नहीं हुई है एंड आई हैव बीन जस्ट काइंड ऑफ ओनली सिटिंग एंड वर्किंग द All my day. So this is what it does, right? This and now I know that when people say ki ek achhi aadat dal lo to usko na aapka lifestyle banne mein thoda sa waqt lagta hai, but once it kind of starts becoming your lifestyle, you will know and understand why it was so much required. तो भाई ये जो जब आज इतना कम movement हुआ body का and you know आज बिल्कुल वक्त नहीं मिला, खाने का भी वक्त नहीं मिला था आज दोपहर को, कुछ इतना chaotic सा दिन गया, बट वेल आई वॉज लाइक कि नहीं नहीं आज तो आज ही का वो दिन है कि मुझे जाना ही जाना पड़ेगा। आप कितना भी टायर्ड फील कर लो, कुछ भी कर लो, बट यस अपन जाएंगे। तो अपन अपना कमिटमेंट करने वहां पर बिल्कुल जाने वाले हैं। आपसे कल मुलाकात होगी मस्ती 90s मिक्स टेप पर, यस 11 बजे, लेकिन उससे पहले नुपुरवा जी हाँ मस्ती मॉर्निंग्स लेकर बिल्कुल यहाँ पर हाजिर हो जाएगी। मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाजत। आई हैड अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम, ऑल थैंक्स टू यू। आई होप यू हैड अ वंडरफुल टाइम as well. Have a great and amazing evening. Good night. Bye-bye. Toodles. Antra is signing off.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

वेरी वार्म वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स। फिर से और जैसे आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, मैं बोले तो समर लेजेंड्स वाला वेलकम वेलकम वेलकम। आप आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, हिंदुस्तान की फिल्में गानों के बगैर बेजायका सी हैं। गाने होना बहुत जरूरी है, नहीं बहुत सारे गाने बनते हैं फिल्में, रोमांटिक सॉन्ग्स, कॉमेडी सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, भजन, कव्वाली, गजल। गजलें आजकल वैसे कुछ कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कूल हो गए हैं और म्यूजिक थोड़ा हॉट हो गया है। लेकिन एक जमाना था जब ऐसी कोई मूवी होती नहीं थी जिसमें एक आध गजल ना हो। और अगर हिंदी फिल्मों में गजल की बात करें तो थोड़ा बहुत भी जो गजल के बारे में जानते हैं वो सबसे पहले जो नाम लेंगे वो होगा मदन मोहन साहब का। तो वही है हमारे आज के

0: सकता हूँ।
1: जी हाँ, सिंगापुर हमारे लेजेंड्स फिर से, मैं आज के लेजेंड यही है मदन मोहन, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन कोहली, जिन्हें हम प्यार से मदन मोहन साहब कहते हैं, जिन्हें आप मेलोडी किंग भी कह सकते हैं और जिन्हें गजल का शहजादा भी पुकार सकते हैं। गजल का शहजादा की उपाधि तो इन्हें इनकी मुंह बोली बहन लता मंगेशकर जी ने ही दी थी। तो सिंगापुर आज का ये शो इन्हीं के नाम होगा। आज आप मेलोडीज सुनेंगे जो मदन मोहन साहब ने रची। आज तक आपने सिर्फ नाम सुना होगा लेकिन आज आपको पता लग जाएगा कि मेलोडी किसे कहते हैं। तो सुनते रहिएगा रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से। आज मदन मोहन साहब की बात करेगा समर, स्टे कनेक्टेड।
2: झुमका गिरा रे हाय, झुमका

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
5: रहो। सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: वेलकम बैक, सुस्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लेजेंड्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हम लेजेंड्स फिर से में बात कर रहे हैं ग्रेट म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन साहब की। तो शुरू से शुरू करते हैं उनकी कहानी। 24 जून 1924 को इराक के बगदाद में इनका जन्म हुआ। यानी ये पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तानी नहीं है, इराकी हैं। तो बगदाद में ये पैदा हुए साहब। राय बहादुर चुन्नी लाल इनके पिताजी थे, जो उस वक्त आर्मी में अकाउंटेंट जनरल थे। और मदन मोहन साहब क्या कहें इनके बचपन के बारे में। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं, दिख जाते हैं। तो ऐसे कुछ थे, चाइल्ड प्रोडिजी थे ये। 2 साल की उम्र में ही, कैन यू बिलीव, 2 साल की उम्र में ही इनको म्यूजिक का सेंस आ गया था। आप पूछेंगे यार 2 बरस की उम्र में कैसे हो सकता है। तो सुनिए, इनके पिता चुन्नीलाल जी के पास म्यूजिक कैसेट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। तो जब उनके कुछ दोस्त घर आते तो अपने 2 बरस के बेटे का तमाशा वो अपने दोस्तों को दिखाते। इस 2 बरस के बच्चे को वो बोलते, जाओ बेटा वो गाने वाली कैसेट लेकर आओ। और ये छोटा सा बच्चा जाता और ढूंढ ढूंढ कर वो कैसेट लाकर अपने पिताजी को दे देता। और पिताजी बड़े खुश होकर कहते, देखा मेरा बेटा इतनी सी उम्र में ये सब कुछ कर लेता है। बहरहाल उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उनसे कहा गया कि देखिए अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहिए, आपको यहाँ की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप जहाँ के हैं वहाँ चले जाइए। बहरहाल मदन मोहन जी के पिताजी ने हिंदुस्तान आना मुनासिब समझा। पंजाब में चकवाल नाम की एक जगह है, वहाँ ये रहने लगे और यहीं से स्कूल जाने लगे। चूंकि इनके पिता काम के सिलसिले में मुंबई रहने लगे थे तो ये यहाँ अपने दादा दादी के साथ रहने लग गए। पिता ने एक छोटा सा ड्रम सेट लेकर दिया तो ये ड्रम बजाने लग गए। और 7 बरस की उम्र तक तो ये पक्का हो गया कि ये लड़का चाइल्ड प्रोडिजी है म्यूजिक में। घर के आसपास कोई भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता या कोई मेला वेला लगता तो वहाँ पर जाकर मदन मोहन साहब अब गाना गाने लग गए। फिर कुछ समय बाद इनका परिवार लाहौर आ गया। लाहौर आने के बाद मदन जी की लाइफ में क्या हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ जो आपको बताना बनता है, जो मैं इस ब्रेक के बाद आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन इन गानों का लुत्फ उठाइए जो मदन मोहन जी ने कंपोज किए और कंपोज नहीं किए, मैं कहता हूँ रूह के तार झनकृत कर दिए उन्होंने। आप गुनगुनाना उठें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम वैसे समर है अभी तक तो, और मुझे यकीन है कि आप मेरा नाम बदल नहीं पाएंगे। इन गानों को सुनिए, लौट कर आइए, मैं आपका यही इंतजार कर रहा हूँ। रेडियो मसी 24/7 लाइव आपने ट्यून इन किया हुआ है। कीप लिसनिंग।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें, और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: स्वागत स्वागत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ। पहले खास बात, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप हमें जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। फिलहाल हम आज बात कर रहे हैं मदन मोहन साहब की। जी, मैंने अब तक आपको बताया कि इनकी फैमिली इराक से चकवाल और चकवाल से अब लाहौर आ गई थी, इसलिए क्योंकि इनको आगे की पढ़ाई करनी थी। तो साहब ये स्कूल तो जाते थे लेकिन मन तो म्यूजिक में लगा हुआ था। तो बहरहाल करतार सिंह जी जो म्यूजिक के उस्ताद थे लाहौर में, उनसे ये म्यूजिक के बेसिक्स सीखने लग गए। फिर कुछ सालों बाद इनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में जहाँ ये रहते थे वहीं पास में ही म्यूजिक की उस्ताद रहती थी जगदन बाई को शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, संजय दत्त को तो आप जानते हैं ना जी, जिनकी फिल्म आई थी अभी संजू, उनकी मदर को आप जानते हैं नरगिस दत्त जी, ये उनकी भी मम्मी है जगदन बाई, यानी संजू की नानी नरगिस की माँ। तो इनके पास मदन जी संगीत सीखने लग गए। यहीं इनकी मुलाकात एक मोटे से गोरे चिट्टे नीली आंखों वाले लड़के से हो गई। इन्होंने किसी से पूछा कि भाई ये कौन है जो इतना बोलता है? तो किसी ने कहा कि भाई साहब ये पृथ्वीराज कपूर का बेटा है, रणबीर राज कपूर है इसका नाम। तो साहब इनकी यहाँ दोस्ती हो गई और एक अच्छी दोस्ती हो गई। हाँ, ऐसी वैसी नहीं, इस म्यूजिक स्टूडियो में कुछ प्रोग्राम्स भी हुआ करते थे, स्टेज प्रोग्राम्स। तो एक दिन मदन जी मरीन ड्राइव पर घूम रहे थे। मरीन ड्राइव पर घूमते घूमते कुछ ऐसा हुआ जिसने किसी की जिंदगी बदल दी। क्या हुआ था ये मैं बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। आप सुनते रहेगा लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक समर की आवाज में आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से ओनली ऑन रेडियो मजी 24/7 लाइव। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। तो चलिए ब्रेक के पहले मैं मदन मोहन जी की मुंबई की मरीन ड्राइव पर घूमने वाली कहानी सुनाने वाला था। तो साहब इन्हें यहाँ एक लड़की मिली, ये महज 9 साल की लड़की थी। वो लड़की यहाँ एक गाना गा रही थी। मदन मोहन जी को लड़की की आवाज बहुत अच्छी लगी, क्यों ना इस लड़की को वहां लेके जाया जाए, ये यहाँ गाना गा रही है, इसको तो स्टेज पर गाना चाहिए। तो बहरहाल ये उसको जगदन भाई के पास ले गए। वो लड़की बताए कौन थी, गैस कीजिए, गैस एनी गैसेस, कोई भी, हाँ वाइल्ड, नहीं आप नहीं कर पाएंगे, सुरैया थी वो, अपने जमाने की बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन सिंगर सुरैया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिस एक्टर ने पहली बार 1 लाख रुपए लिए थे वो दिलीप कुमार साहब नहीं थे, वो देवानंद भी नहीं थे, वो राज कपूर भी नहीं थे, बल्कि सुरैया थी जिन्होंने 1 लाख रुपए लेकर एक फिल्म की थी। यानी इससे पहले एक एक्टर सिर्फ 10,000, 20,000 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए लेते थे, लेकिन जब इन्होंने 1 लाख रुपए फिल्म के लिए लिए तो हंगामा हो गया था इंडस्ट्री में। सब कहने लगे थे कि भाई अगर 1 लाख रुपए फिल्म के सिर्फ एक्टर लेने लग गए तो फिर तो बन ली फिल्म। चलिए फिलहाल तो हम उसी कहानी पर लौटते हैं। तो मदन मोहन जी साहब इस 9 बरस की लड़की को वहां ले गए और फिर सुरैया वहां गाना भी सीखने लगी और गाने भी लगी। इसी बीच इनकी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो गई और बावजूद इसके कि इनसे पूछा जाता कि अब तुम क्या करना चाहते हो, मैं मदन मोहन जी की बात कर रहा हूँ, इनके पिताजी ने इन्हें मिलिट्री में भेज दिया बगैर पूछे। भाई मैं मिलिट्री में था, तुम भी जाओ। अब साहब पिताजी का हुक्म था तो टाल पाना बड़ा मुश्किल था, नहीं टाल पाए। बहरहाल कुछ साल हो गए वहां रहे ये मिलिट्री में और फिर ये नौकरी छोड़कर लखनऊ और फिर लखनऊ से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनकी मुलाकात एक खास शख्स से हुई, लेकिन वो कौन था शख्स बताऊंगा आपको इन गानों के बाद।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: They are fresh. They are hot.

0: टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत। आप समझ सकते हैं कितना स्वागत कर रहा हूं मैं, दोनों बाहें फैलाकर। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर कर रहा है ये स्वागत। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, और आज हमारे शो के जो फनकार हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो हैं ग्रेट म्यूजिक कंपोजर श्री मदन मोहन साहब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मदन मोहन साहब मिलिट्री की नौकरी छोड़कर लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली आ गए, और यहां इनकी मुलाकात हुई शेखर और राज मेहरा से। ये वही राज मेहरा है जिन्हें आपने यकीनन देखा होगा फिल्मों में। भाई उन फिल्मों में ये बहुत सी हीरोइनों के बाप बने, और जो अक्सर हीरो को बुला करते थे कि ये शादी नहीं हो सकती। अब आप याद करेंगे तो आपको उनका चेहरा भी नजर आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो गूगल किस लिए भाई। वैसे अगर आपने थोड़ी बहुत फिल्में देखी हैं तो जरूर जरूर आप मेरी बातों से ही उनको याद कर पाएंगे, आपके सामने वो पिक्चर आ गई होगी। बहरहाल ये एक अलग बात थी। दिल्ली से ही मुंबई आ गए। मुंबई में इनके फादर ने पूछा कि भाई एक तो तुम नौकरी छोड़ आए हो, और फिर ये रेडियो इसमें क्यों काम कर रहे हो, क्या है ये, तुम करना क्या चाहते हो। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि पिताजी मैं फिल्मों में म्यूजिक देना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हालांकि राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली साहब वो खुद बॉम्बे टॉकीज, जो कि उस वक्त का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टूडियो था, उसके आधे मालिक थे, मतलब पार्टनरशिप थी इनकी, फिर भी इन्होंने मदन मोहन जी को मना कर दिया और कहा कि अगर तुम फिल्मों में जाना चाहते हो तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। मदन जी ने घर छोड़ दिया, क्योंकि वो तो पैशनेट थे भाई। तो सिंगापुर घर छोड़ने के बाद कैसे वो म्यूजिक कंपोजर बने, क्या क्या हुआ उनके साथ, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके स्ट्रगल की कहानी मैं लौट कर बताऊंगा आपको। आप भी शायद ये सुनना चाहेंगे मेकिंग ऑफ मदन मोहन जी, जिसे मैं बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। इसलिए आपको रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चिपक कर सुनना होगा लेजेंड्स फिर से।

आइए आइए, स्वागत आपका एक बार फिर से। ये है लेजेंड्स फिर से रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। और आज सिंगापुर हम बात कर रहे हैं श्री मदन मोहन साहब की, जिन्हें हम मेलोडी किंग कहकर पुकारते हैं, उन्हें हम गजल का शहजादा भी कह सकते हैं। तो उनकी कहानी में हम इस मोड़ पर आ गए थे कि अब वो घर छोड़ आए हैं म्यूजिक कंपोजर बनने के लिए, लेकिन अभी तो स्ट्रगल करना बाकी था। तो घर से निकलने के बाद ये फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल्स करने लगे। पैसा तो कमाना पड़ता है ना, स्ट्रगल इतना आसान थोड़ी होता है। आवाज अच्छी थी तो कुछ गाने भी गा रहे थे। एक बार एसडी बर्मन साहब ने इनकी आवाज सुनी तो वो उन्हें अच्छी लगी, और इन्हें वो जानते तो थे ही। तो वो एक बार उनसे मिले और कहा कि तुम ये जो कभी कुछ और करते हो ना, ये सब मत करो। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर बन सकते हो, तुम उस पर कंसंट्रेट करो। और फिर सिंगापुर इस महान संगीतकार की बात सुनकर 1950 में वो दिन भी आ गया जिसे हम ब्रेक कहते हैं, इनिशियल ब्रेक। वो मिला मदन मोहन साहब को जब आंखें रिलीज हुई। इस फिल्म में मदन मोहन ने म्यूजिक दिया और म्यूजिक हिट हो गया। ये था उस फिल्म का गाना। आप समझ सकते हैं कैसा म्यूजिक था, ये 1950 की बात है। और अब 3 साल बाद इन्होंने अपने पिताजी से कांटेक्ट किया। घर से निकलने के बाद अब तक कोई कांटेक्ट नहीं था इनका। अपने डैडी को इन्होंने बुलाया और वो फिल्म दिखाई। राय बहादुर चुन्नीलाल जी को ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, यकीनन लगी होगी, अंदाजा लगा रहा हूं मैं तो, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद वो चुपचाप अपनी गाड़ी के पास चले गए और बेटे को बोले कि आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि तुम इस फील्ड में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इतना अच्छा काम किया है बेटा, शाबाश, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये दिन मदन मोहन जी के लिए बहुत खास था, बहुत बड़ा था। वो हमेशा कहते हैं कि उस दिन से बड़ा मेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद जब तक पिताजी जिंदा रहे, पहले जैसा ही रिश्ता हो गया उन दोनों का। खैर, अब मदन मोहन जी के फिल्मी करियर की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई थी और चढ़ने के साथ साथ तेज गति से दौड़ने भी लगी थी। तो अब इस ट्रेन के सफर में कौन कौन सी ऐसी फिल्में आई जिन्होंने मदन मोहन को मेलोडी और गजल का उस्ताद बना दिया। बात करेंगे उनकी फिल्मों की, उनके करियर की। आप इन गानों को सुनिए, लुत्फ लीजिए। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो, नाम है इसका रेडियो मसी 24/7 लाइव, जो 24 घंटे 7 दिन अब आपके साथ है। मैं समर हूँ, थोड़ी देर के लिए आता हूँ, मुझे भी सुन लीजिए।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
2: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
3: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
4: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से मेरे यानी समर के साथ, समर लेजेंड्स वाले के साथ, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव। आज हम बात कर रहे हैं मदन मोहन साहब की, उनकी फिल्मी जिंदगी को जी रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उनकी जिंदगी भी किसी फिल्म की तरह ही थी। खैर साहब, इनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई आंखें 1950 में। इसके बाद 1952 में एक फिल्म आई मदहोश, जिसमें पहली बार लता जी ने गाना गाया। और आपको एक बात बताऊं, मदन जी लता जी के बहुत बड़े फैन थे। एक बार जब शुरू में इनकी आंखें रिलीज हुई थी ना, उससे पहले किसी फिल्म का गाना ये दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि वो फिल्म कभी रिलीज हुई नहीं, लेकिन गाने के रिकॉर्ड होने के बाद लता जी ने इनकी तारीफ की और फिर मदन जी ने लता जी से क्या कहा ये आप खुद सुन लीजिए।
5: रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा।
4: अब फिल्में चल रही थी, म्यूजिक भी अच्छा चल रहा था, लेकिन जो फिल्म कमर्शियली हिट हुई वो आई 1956 में। फिल्म का नाम था भाई भाई। वैसे इस फिल्म का नाम भाई भाई ही होना चाहिए था, इसलिए कि इसमें किशोर कुमार और अशोक कुमार साहब थे। और इस फिल्म के सारे गाने हिट हुए और एक गाना जो बहुत पॉपुलर था वो था कदर न जाने मोरा बलमा, ये वाला। उस जमाने की फेमस गजल सिंगर बेगम अख्तर, मैं तो कहता हूँ उस जमाने की क्या, आज भी वो मेरी फेवरेट हैं। उन्होंने ये गाना सुनने के बाद मदन मोहन जी को फोन किया और पहले तो बड़ी तारीफ की और फिर बाद में कहा कि तुम खुद ये गाना फोन पे मुझे सुनाओ, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। सिंगापुर किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। मदन मोहन तो लेजेंड इन मेकिंग थे, लेकिन एक लिविंग लेजेंड उनसे कह रहा था कि ये गाना तुम अपनी आवाज में सुनाओ। मदन मोहन जी यकीनन बहुत खुश हुए होंगे, हुए ही होंगे, कोई भी खुश होता। अभी फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कुछ इंटरेस्टिंग बातें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और आज हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार मदन मोहन जी की। सिंगापुर मदन मोहन जी ने एक बात बड़े कमाल की कही है एक इंटरव्यू में कि एक हैप्पी सॉन्ग की वैलिडिटी कम होती है बजाय एक सैड सॉन्ग के। हैप्पी सॉन्ग ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक आप गुनगुना सकते हैं लेकिन सैड सॉन्ग बरसों तक चलता है। और इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण उन्होंने दिया 1961 में आई एक फिल्म संजोग का, जिसमें इन्हीं का म्यूजिक था और म्यूजिक कमाल का था। एक गाना था इसका जो कल्ट क्लासिक बना, वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई, सुना है आपने? लीजिए सुन लीजिए।

उसके बाद 1966, इसे तो हम मदन मोहन जी के लिए गोल्डन ईयर बोल सकते हैं, इसलिए कि इस साल इनकी तीन फिल्में ऐसी आईं जिनका म्यूजिक हिट नहीं सुपर डुपर हिट रहा। दो फिल्में तो डायरेक्टर राज खोसला साहब की थी। पहली फिल्म आई वो कौन थी का एक एक गाना जबरदस्त था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। इस गाने की एक स्टोरी है, वैसे मैं आपको बताता हूँ। ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी किसी काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी, तो वो आ नहीं पाई और गाना जल्दी ही शूट भी होना था और शूटिंग नैनीताल में होनी थी, तो मदन मोहन जी ने ये गाना अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज दिया कि भाई तुम शूटिंग तो कर लो, लता जब आएगी तो हम डब कर लेंगे। अब देखिए कि बड़े तरीके से साधना जी ने मेल वॉइस को सुनकर लिप सिंक किया और बेहद कमाल का किया, और फिर जब लता जी आई उसके बाद ये गाना उनकी आवाज में डब हुआ।

अब इसी फिल्म में एक और गाना है जो मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने भी म्यूजिक को समझा है, सुना है या म्यूजिक के बारे में समझ है तो उसने ये गाना सुना तो होगा ही और साथ में ये उसका फेवरेट भी होगा। कौन सा है ये गाना और ये गाना कैसे बना, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन मदन जी के इन गीतों के बाद। मदन मोहन स्पेशल लेजेंड्स फिर से आप सुन रहे हैं समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग।

0: some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
2: एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत, तहे दिल से स्वागत, इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं रेडियो मैसेज 24/7 लाइव और लेजेंड्स फिर से। मेरा नाम है समर। आज हम जिस महान कलाकार की बात कर रहे हैं उनका नाम है मदन मोहन जी। हम मदन मोहन जी की जिंदगी के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। मैं समर हूँ, समर लेजेंड्स वाला। हम बात कर रहे थे फिल्म वो कौन थी के गाने की। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कह रहा था ना कि एक गाना है जो बड़ा एक कमाल का है। वो गाना कौन सा है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ये, अरे ये तो हमारा भी फेवरेट है जी। वो गाना है लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, याद आ गया आपको। अब मैं बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। मदन मोहन जी ये धुन राज खोसला साहब को, इस फिल्म के डायरेक्टर को, 2-3 बार सुना चुके थे, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि राज साहब को ये धुन कुछ जच नहीं रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मदन जी ने ये धुन इसी फिल्म के हीरो मनोज कुमार को सुनाई, उन्हें ये अच्छी लगी और बोले कि यार ये धुन तो तुम इस फिल्म में जरूर लेना। मदन जी ने कहा कि ले तो लूं, लेकिन राज साहब को तो अच्छी नहीं लग रही ये धुन। तो बोले मैं बात करता हूँ, आप तो ये धुन तैयार रखो, ये होनी चाहिए यार, कितनी कमाल की है। अब एक दिन स्टूडियो में ये तीनों बैठे हुए थे, यहाँ मदन जी ने राज साहब और मनोज कुमार के सामने ये धुन सुनाई और राज साहब को अब ये धुन बड़ी पसंद आ गई और बोले कि यार आज मुझे अच्छी लग रही है, पहले क्यों नहीं लगी। बहरहाल बाद में इसी धुन पर गाना बना और आप सुनिए क्या खूबसूरत गाना गाया है लता जी ने, कमाल कमाल। लीजिए अभी एक क्लिप सुना देता हूँ आपको।

इसी साल साहब एक और फिल्म आई, मेरा साया। फिल्म का टाइटल पहले साया रखा गया था, लेकिन फिल्म का एक गाना मेरा साया साथ होगा जब आया, तब इसमें मेरा साया जब बार बार आया तो फिल्म की यूनिट ने कहा कि इसका टाइटल तो मेरा साया ही रखा जाना चाहिए। इसके बाद तो फिल्मों की जैसे झड़ी लग गई साहब। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारी की वो गजल, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, आहा, या फिर चिराग का तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हंसते जख्म के तो सारे ही गाने हिट थे।

या फिर दस्तक, जिसके लिए इन्हें पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। बावर्ची, लैला मजनू, इन फिल्मों के एक एक गाने आज भी उतने ही हिट हैं और उसी तरह से याद हैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब याद थे। एक गाने का जिक्र और करना चाहूंगा मैं, अनपढ़ फिल्म का एक गाना था, गजल थी लता जी की आवाज में, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ओहो क्या बात थी इस गजल में भी, बहुत कमाल उम्दा। चलिए फिलहाल मैं इतने सारे गानों की बात कर चुका हूँ तो कुछ गाने तो आपको सुनवा ही देता हूँ, लौट कराऊंगा आपसे आखिरी मुलाकात करने के लिए। स्टे कनेक्टेड टू रेडियो मधुबनी 24/7 लाइव। दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
3: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
4: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
5: जीजी।
4: कृषि वल नट्स ओनली ऑन ggmartonline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए ggmartonline.com।
5: ggmart योर पर्सनल ग्रोसर।
6: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आइए आइए आइए, आज की आखिरी मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स, फिर से मेरे यानी समर के साथ। सिंगापुर आज हमने लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी की बातें की। वो कहते थे कि एक कलाकार को जज्बाती होना बेहद जरूरी है, इमोशनल होना चाहिए। जज्बात अगर उसके अंदर नहीं है तो वो अच्छा कलाकार कभी नहीं बन सकता। मदन जी बेहद जज्बाती थे और अपने काम के लिए ईमानदार थे। इसकी मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। एक फिल्म जिसे एक्टर ओम प्रकाश ने प्रोड्यूस किया था, जहां आरा उसका नाम था। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई तब मोहम्मद रफी साहब का अलग ही परचम लहरा रहा था। हर किसी फिल्म के लिए वो गाने गा रहे थे, लेकिन इस फिल्म के गाने गाने के लिए मदन मोहन जी ने तलत महमूद को चुना। हालांकि उस वक्त तक वो लगभग गाने गाना छोड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने उन्हें लिया क्योंकि इन्हें लगा कि ये सारे गाने तलत महमूद जी की आवाज में ही अच्छे लगेंगे। और बाद में फिर वाकई ये गाने हिट भी हुए। ऐसे ही जब लैला मजनू रिलीज हुई तब किशोर कुमार का परचम था भाई साहब, बहुत हिट चल रहे थे वो, उनका गाया हर गाना हिट हो रहा था। लेकिन इन्हें लगा कि इस फिल्म के गाने रफी साहब की आवाज में अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने उन्हीं से गवाए। तो ये सब दिखाता है कि वो भीड़ में चलने वाले नहीं थे। सिंगापुर इसके अलावा एक और खासियत थी मदन मोहन जी की, जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, वो कमाल के शेफ थे। कुकिंग का जबरदस्त शौक था उन्हें साहब। ग्रेट सिंगर मन्नाडे जी तो उनकी हर बार तारीफ करते थे कि उन जैसा खाना तो कोई और बना ही नहीं सकता। अच्छा, खाने में भी वो अजीब अजीब तरह का कॉम्बो रखते थे। वेज नॉन वेज के साथ एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बना देते थे, जैसे भिंडी मटन, जैसे गोभी मटन, आलू मटन। तो मन्नाडे जी कहा करते थे, यार ये कैसा कॉम्बिनेशन है। फिर मदन जी बोलते थे, अरे यार तुम खाली बकवास मत करो, एक बार खाके तो देखो। और खाने के बाद सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स में उनका बड़ा इंटरेस्ट था, और खास करके हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान दारा सिंह की फाइट देखने में उन्हें बड़ा मजा आता था। सिंगापुर आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की फिल्म वीर जारा में मदन मोहन जी का ही म्यूजिक था। उनके बेटे ने उनकी रिकॉर्ड की हुई कुछ अनयूज्ड ट्यून्स को यश चोपड़ा साहब को सुनाया, और यश जी ने उन सारी धुनों को अपनी फिल्म वीर जारा में ले लिया। और आप तो जानते हैं वीर जारा का एक एक गाना कितना खूबसूरत बन पड़ा, और जावेद अख्तर साहब के बोल थे। सिंगापुर बातें बहुत सारी हैं, लेकिन भाई क्या करें, जाने का वक्त है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी फनकार की जिंदगी से वाकिफ होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और कीजिए कुछ वादे। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल। मोहब्बत बनकर किसी के दिल में बस जाएंगे, मुस्कान बनकर किसी के चेहरे पर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा, मेरा नाम है समर, आपसे मिलता हूँ यहीं पर, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार एंड टेक केयर।

अदैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
1: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ।
0: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर,
2: जीजी
0: कृषि वल नट्स, ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
2: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: रात अकेली है
4: तो क्या हम तो आ

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: रात अकेली है
0: तो क्या हम तो आप

0: अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ। जोश में
3: रहो। रात अकेली है
0: तो क्या, हम तो

बातों की भेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल, थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सौंठ थोड़ा तेल,

मोटे लाला शौकीन गोलमोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे दीन।

चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, कहीं ढोल कहीं पोल सीधी बात टेढ़ी चाल। हाय

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हाँ यार सौदा सौदा
3: ओहो दोनों डील करा सील।

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैन हैटन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl.

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो
2: हे बेनी यप बली हुप हिप्स हे
3: गोपी
2: यप
4: पा पा पा पावन
2: बोल हाय भंस हाय लेट्स

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: ऐसी मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। क्या आपके अंदर भी ऐसी कोई आवाज आ रही है? हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुकी है। और जिस दिन सुबह उठने के साथ आपके अंदर ऐसी वाली बातें आने लगे, ऐसे एहसास होने लगे, इंट्यूशन होने लगे कि आज का दिन अच्छा जाएगा, फिर उसके बाद जो हम डिसीजन लेंगे वो भी अच्छे जाएंगे, तो इन चीज़ों से डरा मत करो, थोड़ा सा विश्वास रखा करो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सो डेफिनेटली अपने अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनिए, अपने आसपास की वॉइसेस को थोड़ा सा ब्लर कीजिए और आगे बढ़िए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कुछ ऐसी ही बातें बॉलीवुड के इनसाइट्स के साथ मिलाकर लेकर आ चुकी हूं, एंड डेफिनेटली बातों का सिलसिला बढ़ चुका है। चलो चलो चलो, ऑन पॉजिटिव नोट आने वाले गानों को एंजॉय करो एंड डेफिनेटली स्टे विद मी यार।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। हर चीज सीखनी पड़ती है तभी आ पाती है अच्छे से। एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, सोल्ड करना, रीपर्चेज करना, प्रॉपर्टी को होल्ड रखना, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन टॉपिक समझना, ये आसान चीज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है फाइनेंस डिपार्टमेंट पढ़ने वालों से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है ना, वो इस मुद्दे को समझ चुके हैं। यू नो व्हाट, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ एक बड़ा डिसीजन ले लिया है किसने, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड ने। हाँ जी, उन दोनों ने मिलकर करीबन 14 साल पहले मुंबई में एक अपार्टमेंट लिया था 1.94 करोड़ का, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का, एंड अब उसे ऑलमोस्ट डबल रेट में बेच दिया है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है ना, कि लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। एंड डॉलर से डॉलर, पैसे से पैसा बनाना बहुत आसान होता है, राइट। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: दिस इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक कहानी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू जाएगी।
1: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
0: एक घर, दो मजहब।
2: आप यहाँ नहीं रह सकते।
3: मैं कितनी जाना, ये मेरा घर है।
0: हर बंटवारे के बीच कुछ रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं।
4: वो माँ है, माँ माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
0: बंटवारा 1947 स्टारिंग सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी एंड मोर। रिलीजिंग 14th अगस्त आइलैंड वाइड एट द सिनेमास नियर यू। ब्रॉट टू यू बाय विजन डिस्क सिंगापुर। Not all music is loud. Some songs just sneak in. Makes you smile. Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: अच्छा, आजकल एक ही सवाल सबके दिमाग में है कि हम जो खा रहे हैं क्या वो सच में नेचुरल है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए हेल्दी चॉइसेस ढूंढ रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, कहाँ? जीजी मार्ट, जो कि आपका है पर्सनल ग्रोसर, जहाँ हर प्रोडक्ट के साथ मिलती है प्योर गुडनेस। एंड यहाँ आपको ना 100% नेचुरल गुलकंद मिलेगा, सन कुक्ड रोज पेटल जैम मिलेगा। तो टेस्ट के साथ फ्रेशनेस भी अगर आपको चाहिए, इम्यूनिटी और वेलनेस का आपको ध्यान रखना है ना, तो आप जामुन हनी भी प्रेफर कर सकते हैं, जो कि प्योर है, रॉ है, नेचुरली रिच है इन एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये सारी बातें आपको कहां मिलेंगी? ggmartonline.com पर, या विजिट कीजिए ggmartpte limited 432 बैलेस्टियर रोड, पब्लिक मेंशन सिंगापुर 329813। एनीवेज, ऑर्डर करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं 8085-6577, या फॉलो कीजिए ggmart.sg। डेफिनेटली मैं आज इन पर ऐसे ही हेल्दी ऑप्शंस, हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी बातें बताती रहेगी। डोंट गो एनीवेयर।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर आप सिर्फ एक क्लिक दूर।
4: जीजी
3: कृषिवल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: गाना चाहिए, आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
6: ऑल इज वेल।
5: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151-8963 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
0: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: ये गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
0: यू नो वॉट, हमारे घर के बुजुर्ग कई बार हमें ऐसी बातें बताते हैं कि बंटवारे के टाइम ऐसा माहौल था, बंटवारे से पहले ऐसा माहौल था, या बंटवारे के दौरान ये लोग बिछड़ गए थे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमने बातों बातों में घर के बड़े बुजुर्ग से तो सुन लिए, लेकिन अब इसे पिक्चराइजेशन की तरह देखने का वक्त आ चुका है। डेफिनेटली मैं आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, एंड दिस 14th of August रिलीज हो रही है अक्रॉस द आइलैंड बंटवारा 1947, राइट। सनी देओल एंड प्रीति जिंटा स्टारर ये मूवी आपको पुराने दिनों का एहसास दिलाने वाली है। काफी ऑथेंटिक रियलिस्टिक इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगी, एंड डेफिनेटली इट्स ब्रॉट टू यू बाय विजन दिस सिंगापुर। टिकट्स करवाइए एंड अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, पुराने इंडिया के दिनों को याद कीजिए। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: नया फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.